0: सुर में गाना सीखिए पाधानिसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
1: जाने वो कैसे

0: ऐसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।
1: भाई बहुत खूब गोई बाबू, बड़ा शुक्र नवाज है घर आपका। नौकर चाकर भी शायरी करते हैं।
2: मियाँ, शायरी सिर्फ दौलतमंदों की जागीर नहीं। तुम कुछ कह रहे थे बरखुर्दा, चुप क्यों हो गए? कहो कहो।

0: तो फिर उस दिन तुमने मुझे वो दर्द भरी नसम क्यों सुनाई? मेरे सोए हुए जज्बात फिर से जाओ,
1: पिछली बातें भूल जाओ मीना।
0: भुला तो रही थी, अपनी जिंदगी को नए सांचे में ढाल लिया था मैंने, दिल को समझा लिया था मैंने, इस दिल को फिर से बेचैन करने के लिए दोबारा क्यों चलाया मेरी जिंदगी में?
1: मैं तुम्हारी जिंदगी से किया ही कब था, तुम खुद ही चली गई थी मेरी जिंदगी से। वो तुम्हारी पहली गलती थी, उसे सुधारने के लिए अब दूसरी गलती न करो मीना।
0: मैंने कोई गलती नहीं की। हर समझदार औरत को जिंदगी में प्यार के अलावा घरोबार की भी जरूरत होती है, थोड़ी बहुत दौलत के सहारे की भी जरूरत होती है, और यही चीजें पाने के लिए मैंने
1: मिस्टर घोष से ब्याह किया, यानी दौलत के लिए तुमने अपना प्यार बेच दिया।
0: गलत इल्जाम ना दो मुझे। तुमने मेरा प्यार पाया, लेकिन तुम गरीब थे, बेरोजगार थे, जिंदगी में सिर्फ शायरी ही नहीं, प्यार ही नहीं, भूख भी है। जब तुम खुद अपना पेट नहीं पाल सकते थे, उस हालत में मुझसे ब्याह करके मेरा भार उठा सकते थे तुम?
1: उसका मौका ही कब दिया तुमने मुझे? जब इंसान के सर पे जिम्मेदारियां आ जाती हैं, वो उन्हें उठाना भी सीख जाता है। अपने आप को धोखा न दोगी ना? तुम दौलत चाहती थी, ऊंची सोसाइटी चाहती थी, सामाजिक नाम और इज्जत चाहती थी, और आज वो तमाम चीजें मिलने के बाद भी तुम बेचैन पछता रही, जानती हो क्यों? तुमने हमेशा अपना स्वार्थ देखा, इसलिए मेरी जिंदगी से जाते तुमने मेरी खुशी का ख्याल नहीं, और आज तुम अपने पति की खुशी छीना चाहती? मीना, जिंदगी की असली खुशी दूसरों को खुश रखना।

माँ की इकलौती बेटी और अपने स्टेप डैड की पांचवी सेंटीज की सबसे खूबसूरत लड़की।

0: बहुत सुंदर, बहुत प्रभावशाली। एक संगीत के जादू तो हम जानते ही हैं, संगीत का गरिमा क्या होता है इसके बारे में हम सब जानते हैं। संगीत से सुबह होती है, संगीत से शाम होती है, संगीत से हमारा जीवन एक परिपूर्ण होता है। तो फ्रेंड्स, टुडे इन आचार्य कॉलेज वी हैव मिसेस सुनीता गंगरडे मैम। मैम, वेलकम टू आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू हियर। Ma'am has done her faculty at she is in faculty of Maya Somaiya School of Music and Performing Arts, Somaiya Vidyavihar University. She is an eminent classical and semi-classical vocalist. She has achieved gold medal in MA in vocal Indian classical music, and she is disciple of Vidushi Apurva Gokhaleji and Pandit Kiran Phatak and Vidushi Dhanashri Pandit Rai. She is a recipient of former President Dr. Shankar Dayal Sharma Award, Lata Mangeshkar Alankaran Award winner, and awarded a gold medal in memory of Sri R.C. Jal. Performed in International Storytelling Program Gatha in 2023, performed in Indo-Hungarian Program in 2024, and performed in Sri Lankan Program in 2025. She has published 2 papers in international peer-reviewed journals in 2023 and 2024. She has been the judge at ZTV Little Champs and awarded a gold medal by Devi Ahila University in memory of Sri Rabindranath Tagore Janma Shatabdi Mahotsav. She is an active classical music-based YouTuber with 100 plus videos and 4,000 subscribers. Awarded Guru Gaurav Puraskar by Art and Bits Foundation Pune in 2024 and awarded by Sangeet Kala Samman by Akhil Bhatiya Shri Gangade Samaj Mahila Mandal Khandwa at 9th March 2025. So she was invited to our Acharya Marathi College for end of musical therapy. She has beautifully hosted the program and all were obliged by that. So today we have as a guest speaker over here. So ma'am, थोड़ा पहले के थोड़ा पीछे जाते हैं और जानते हैं आपका, आप खांडवा से है, मध्य प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से तो मिठाई बहुत पसंद है हमें, और दूसरी चीज है मध्य प्रदेश की साड़ी। एक मध्य प्रदेश का अपने एक अलग सा कल्चर है जहाँ पे आप फुली फली बड़ी हो गई, तो थोड़े उसके बारे में, आपका घर कैसा था, आपके माता पिता के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए।
1: जरूर जरूर तेजस्विनी जी, सबसे पहले तो आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे गर्व होता है कि मैं खंडवा, मेरी भूमि खंडवा है, जहाँ के किशोर कुमार जी हैं, जगत विख्यात जिनका नाम है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसी नगरी से हूँ जहाँ से इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट निकले हैं। सो मध्य प्रदेश जो है उसको तो भारत का हृदय कहा जाता है, और संगीत के लिए मुझे लगता है बहुत ही अच्छा स्कोप है वहाँ पर। पंडित कुमार गंधर्व जी मध्य प्रदेश से ही हैं, और खंडवा में और इंदौर में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। मेरे माता पिता जो थे उनको बहुत संगीत का शौक था, और बचपन से ही उन्होंने संगीत की शिक्षा मुझे दिलाई। अच्छा। स्पेशली क्लासिकल म्यूजिक का बहुत शौक था मेरे पिताजी को, और ट्रांसफरेबल जॉब में थे, लेकिन जहाँ भी ट्रांसफर होके जाते थे सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी होती थी कि संगीत गुरु कौन हुआ। सो कभी भी उनके ही प्रयासों की वजह से हम, पिताजी का ट्रांसफरेबल जॉब होने के बाद भी हम सीखते गए, और ये जो पैशन है ये धीरे धीरे मैंने इसी में मेरा ग्रेजुएशन किया। एंड डेफिनेटली जब हम किसी चीज की साधना करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें किसी अच्छे मुकाम पर ले आता है। तो आज जो कुछ भी हूँ वो पिताजी के प्रयासों की वजह से हूँ। और बहुत अच्छी बांसुरी वादक थे वो।
0: अच्छा।
1: तो रागदारी का कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन अपने आप जब मैं गाती थी तो वो फ्लूट पर जुगलबंदी करते थे, और बिना कुछ बताए कि कौन सा राग है, क्या स्वर है।
0: हाँ।
1: उनका इतना कमांड था। तो कहूंगी कि उनकी आत्मा में संगीत था। बहुत बहुत सुनने के शौकीन, रात रात भर प्रोग्राम सुनना, हम जो छोटे छोटे से थे हमें लेकर जाना, और उन्हीं के कारण ये धीरे धीरे हम सीखते गए।
0: हाँ।
1: और आज यहाँ आ गए।
0: कोई भी मतलब म्यूजिक हो, चाहे हमारी शिक्षा अध्ययन हो, गुरु का महत्व बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो गुरु कौन से थे आप?
1: बचपन में मैंने शिक्षा पाई श्री हरिश्चंद्र ठाकुर जी से, भोपाल में। काफी सालों तक वो एमएलबी कॉलेज में जुड़ी रहे, और उसके बाद जब मैं 1996 में शादी होकर मुंबई आ गई तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले श्री किरण फाटक सर से संगीत सीखा. लगभग 15 साल तो मैंने उनसे फिजिकली बाद में मैं कहूंगी कि ये तो एक जीवन ही कम संगीत के लिए. आज भी सर के कांटेक्ट में हूँ और अध्ययन चालू है. उसके बाद 2017 में मैंने अपूर्वा गोखले जी के पास ग्वालियर घराने की गायकी लेना शुरू किया जो आज भी चालू है. और क्योंकि मुझे सेमी क्लासिकल का बहुत शौक मेरे पिताजी मेरी आवाज सुनकर बचपन में ही कहा करते थे कि आपकी आवाज ठुमरी के लायक है. सो मुझे लगाव भी था बहुत. मुझे उस समय में कैसेट्स चलते थे. उन्होंने मुझे काफी सारे कैसेट्स लाके दिए थे और सुनती रही मैं. सुन सुन के मुझे सेमी का बहुत शौक हो क्योंकि उसमें जो भाव है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था. तो इस वजह से मैं धनश्री पंडित राय जो शोभा गोखले जी के डिसाइपल हैं उनके पास मैंने जाना शुरू किया. और कुछ थोड़ी बहुत भी जो मैं उनसे तालीम ले पाई हूँ सेमी की वो धनश्री जी से ली है.
0: जी जी. और धनश्री जी से मेरी भी मुलाकात हुई थी बिकॉज आई ऑल्सो हैव सम कनेक्ट्स विद इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. तो बहुत बड़ी विदुषी है. सुनीता जी अभी आपने ठुमरी का जिक्र किया है तो हमारे दर्शकों के लिए एक छोटी सी कुछ बंदिश आप ठुमरी की पेशकश करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा.

0: सुनीता जी, जैसे हम आपने कहा आप कैसेट से बहुत सारे दिग्गजों को सुनती थी, तो आपके फेवरेट कौन है, मतलब इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, शास्त्रीय संगीत में और उपशास्त्रीय संगीत में? आपने जिक्र किया शोभा गुड्डू जी का, तो आपके कौन से, मतलब आप किनको ज्यादा सुनती है, सुनना पसंद करती है और उनसे ज्यादा सीखती है?
1: मुझे क्लासिकल म्यूजिक में पंडित जसराज जी, उनके
0: अच्छा,
1: डिसाइपल संजीव अभ्यंकर जी
0: हाँ
1: और अजय चक्रवर्ती जी, इनको सुनना बहुत
0: ओके
1: पसंद है। ऐसे तो मैं नाम बताना बहुत मुश्किल होता
0: हाँ
1: है,
0: मुश्किल
1: क्योंकि कई बार कुछ राग हमें कुछ आर्टिस्ट पे बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम सुनते हैं इनको। और लाइट म्यूजिक में मुझे शोभा गुप्ता जी का शुरू से ही
0: पसंद
1: बहुत पसंद रहा, और इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं धनुष्की जी से मुलाकात हो गई और उनको गुरु रूप में मैंने पाया। बहुत मुझे गुरुओं का, बहुत सभी गुरुओं का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है, इस बात के लिए मैं बहुत धन्य हूँ।
0: जी बिल्कुल। और हम ये मानते हैं कि गोइंग टू म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स दैट गिव्स अ मेन इम्पैक्ट ऑन अस, मतलब हमारे अपब्रिंगिंग में जो म्यूजिकल कॉन्सर्ट है, जैसे कि आपने शोभा गुड्डू जी का जिक्र किया, मैंने उनको पहले सुना था जब मैं भी छोटी छोटी थी, तो मेरे मम्मी पापा गोवा में दीनानाथ मंगेश्कर सम्मेलन स्मृति समारोह होता था, वहां पे उनको सुना था।
1: अच्छा,
0: तो आप ऐसे म्यूजिक कॉन्सर्ट में कहाँ कहाँ गए हैं?
1: देखिए मुझे शौक था म्यूजिक कॉन्सर्ट अटेंड करने का। खंडवा में जब जब भी, क्योंकि किशोर कुमार की नगरी है, तो वहाँ पर किशोर कुमार की स्मृति में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते थे। अब तो वहाँ उनकी स्मृति में गौरी कुंज नाम का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बन गया है, म्यूजिक
0: अच्छा
1: कॉलेज ओपन हुआ है। जब जब भी जैसे मौका मिलता था, तानसेन समारोह में मैं गई हूँ, वहाँ सुनती थी, कालिदास समारोह में गई हूँ वहाँ, फिर हमारे ओंकारेश्वर में नटराज उत्सव होता था, जहाँ पर कि बड़े बड़े कलाकारों का गायन होता था। तो छोटी जगह से हूँ, खंडवा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जब जब भी मौका मिलता था मैं ज़रूर कॉन्सर्ट्स अटेंड करती थी, क्योंकि लाइव म्यूजिक सुन के जो हमारे मन पे उसका प्रभाव होता है वो बहुत ही अलग होता है। इसीलिए शास्त्रीय संगीत ने कहा है कि सुनना बहुत जरूरी
0: सुनना
1: है।
0: जरूर, और वो गुरु शिष्य परंपरा भी उसको ज्यादा मायने रखती है। खानवा से कुमार गंधर्व जी भी वहां पे रहते थे
1: कुमार
0: ना,
1: गंधर्व जी देवास से,
0: देवास से?
1: देवास
0: अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और
1: जरूर।
0: आगे बढ़ते हैं। हम सुनते आप सुनते रहिए आचार्य 98 FM ओल्ड रेडियो। टुडे वी आर हैविंग अ गेस्ट डॉक्टर सुनीता गंगरडे, हु इज डिसाइपल ऑफ अपूर्वा गोखले जी, एंड शी इज बीइंग अ परफॉर्मर एंड शी इज डिलीवरिंग हर लेक्चर्स ऑन म्यूजिक थेरेपी। थैंक यू।

0: Welcome after the break. You are listening to Acharya 90 FM, your own radio. And today in our guest interview, we have Dr. Sunita Gangareddy, ma'am. Ma'am, आपको ये पूछना है कि आपका अपना अपना रियाज होता होगा, मतलब आप बच्चों को कैसे सिखाते हैं वो तो अगला मेरा क्वेश्चन होगा, लेकिन आप अपना रियाज या अपना जो म्यूजिक ऐसा है कि हम सीखते रहते हैं, हर दिन सीखते हैं, नया नया सीखते रहते हैं, तो आपका रियाज आप कैसे करते हैं?
1: हर एक संगीत का जो प्रेमी होता है, स्पेशली शास्त्रीय संगीत, उसके लिए रियाज बहुत जरूरी है. तो हर दिन मेरे दिन की शुरुआत रियाज से ही होती है. फ्रेश होने के बाद मुझे अपने लिए एकांत चाहिए, कम से कम हाफ एन आवर. तो एक बार जो एक राग हम शुरू कर देते हैं मॉर्निंग में, और रियाज कहते हैं कि सिर्फ अपने लिए होता है. तो मैं एकांत पसंद करती हूँ उस समय में, और जो रियाज में राग लेती हूँ वो दिन भर मेरे दिमाग में चलता रहता है. तो रियाज बहुत जरूरी है. कहते हैं कि एक दिन भी रियाज छोटा तो हम एक स्टेप पीछे आते हैं. तो जितना मुझे लगता है कि मेरे लिए खाना खाना जरूरी है, उतना मेरे लिए रियाज जरूरी है.
0: पहले कहा जाता था सुबह से शाम तक वो रियाज करते थे, और इसलिए वो तानसेन और ये इतने बड़े कलाकार हुए हैं. तो आप वो बिलीव करते हैं कि इतना इतने देर का, इतने घंटों का रियाज होना जरूरी है, या फिर आप दो चार घंटा आपका खुद का रियाज करें, या फिर आधा घंटा रियाज करें? क्योंकि आज हमें बहुत मतलब जॉब पे भी जाना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, घर वालों को भी संभालना है, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है. तो आप किस तरह से देखते हैं इस सब चीज़ों को?
1: एक्चुअली इसके लिए सही तालीम मिलना बहुत जरूरी है. संगीत ऐसा विषय है जिसमें गुरु के सामने बैठकर ही सीखा जाता है. आजकल लोग सोचते हैं हम यूट्यूब से सीख लेंगे और हम बड़े विद्वान बन जाएंगे, ऐसा नहीं है. आज के भी टाइम में सही गुरु का चुनाव करना और पूरी श्रद्धा और लगन के साथ गुरु के सामने बैठकर रियाज करना और गुरु के कहे अनुसार, तो निश्चित है कि आपकी प्रोग्रेस होगी ही. ऐसा नहीं है कि बहुत घंटों करने के बाद ही कुछ मिलता है. सही डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे, तो मैं ऐसे सबको हमेशा सिखाते समय कहती हूँ कि जो भी करना है सब संभाल के करना है. एज ए लेडी हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं. उसके बाद भी अगर हमें कला में कुछ करना है, कोई भी कला हो, तो हमें सब चीज़ें संभाल के करनी पड़ती है. पर बेशक बहुत साधना कहा गया है, सो हमें कई घंटों टाइम देना ही पड़ता है. तो रियाज जो है वो तीन तरीके से होता है ऐसा मैं मानती हूँ. फिजिकली बैठकर जितना हम कर सकते हैं, दूसरा सुनने से. अगर किसी दिन हमें नहीं टाइम मिल पा रहा है तो एटलीस्ट हम सुन लें. और तीसरा मनन चिंतन करने से, कि अगर कुछ भी चीज़ें हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली चल रही है कि ये राग है तो उसके बोल अलग कैसे जाएंगे, गानी कैसे जाएगी, सरगम कैसे जाएगी, तो वो मन में पूरे टाइम चलते रहना, वो भी रियाज है.
0: बिल्कुल. अब बढ़ते हैं आपके अध्यापन की ओर. आप सुमेया कॉलेज में बहुत सालों से हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो अनुभव कैसा रहा आपके जीवन में?
1: मैंने जो शास्त्रीय संगीत सीखा, सबसे पहले तो गुरु से तो सीखा ही, लेकिन मैंने स्कूल में भी एक एज ए वन सब्जेक्ट स्कूल में मेरा म्यूजिक था. बाद में मेरा इंटरेस्ट जब मुझे लगा कि इसमें ही है, मेरे फादर को भी लगा, सो मैंने म्यूजिक में ही एमए किया. तो वहाँ से जो है मुझे एक दिशा मिल गई, सही दिशा. मुझे ऐसा लगा नहीं, मुझे करियर इसी में करना है. सो म्यूज़िक में मैंने मास्टर्स किया, गोल्ड मेडलिस्ट रही मैं इंदौर यूनिवर्सिटी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से. उसके बाद मुंबई आने के बाद भी मैंने सीखना शुरू किया, और धीरे धीरे अध्यापन वाली जो बात कही आपने वो आज तक जारी है, क्योंकि संगीत के लिए एक जन्म ही कम है. सो मेरी गुरु को मैं हमेशा कहती हूँ कि इस जीवन में तो मैं आपको नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि वो भी अभी तक मेरी गुरु अपूर्वा गोखले जी अभी तक यशवंत माले जी और शंकर अभ्यंकर जी से सीख रही हैं. मेरे गुरु श्री किरण फाटक सर जी अभी तक विकास कशालकर जी से सीख रहे हैं. सो उन्हीं से मुझे गुरुओं से ही प्रेरणा मिलती है कि हम ये तो हम सोच ही नहीं सकते कि अभी हमें आ गया बहुत, क्योंकि जहाँ ये हमने सोचा वही हमारी प्रोग्रेस रुकती है. सो जितना सीखेंगे, ये तो समंदर की तरह है कि जितना गोता लगाएंगे अंदर उतना आनंद बढ़ने वाला है. तो एक जन्म ही कम है, इसलिए संगीत तो चल रहा है. और माया सुमैया में आने का मेरा ऐसा रहा कि 2015 2015 में मैं सोमैया स्कूल ऑफ म्यूजिक में अपॉइंटमेंट हुआ मेरा. और वहाँ पर ये उन सब आउटसाइडर भी अटेंड कर सकते थे, सोमैया के स्टूडेंट्स. ऐसा पार्ट टाइम था ये सोमैया स्कूल ऑफ म्यूजिक. तो 2015 से लेकर ये 6 ईयर्स चला और 75+ स्टूडेंट्स थे वहाँ. बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा. उसके बाद समीर सोमैया जी जो हमारे ट्रस्टी हैं, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि नहीं अभी इसको हम यूनिवर्सिटी में एज ए डिग्री कोर्स स्टार्ट करेंगे. तो 2021 से मानव सोमैया स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में मैं फैकल्टी हूँ. यहाँ पर BPA, MPA, PhD सर्टिफिकेट कोर्सेज इन सब के लिए.
0: मैम आजकल के बच्चे बहुत टेक्निकली मतलब टेक्निक ज्यादा यूज करते हैं, तो उनके प्रति जैसे हम देखते हैं पुणे में है, कहीं कहीं बेंगलोर में है, जो संगीत आपने कहा मध्य प्रदेश में, वो म्यूजिक के प्रति ज्यादा उनका लगाव रहता है. लेकिन बॉम्बे जैसे सिटी में आप बोल रहे हैं तो इतना अच्छा आप डिलीवरी दे रहे हैं उनको, 75 स्टूडेंट्स है, तो उनका मतलब शास्त्रीय संगीत के प्रति कैसा उनका लगाव है उसके बारे में थोड़ा बताएं.
1: एक्चुअली आजकल के जो यंग बच्चे हैं वो शास्त्रीय संगीत के प्रति उनका रुझान कम है. लेकिन मेरी यही कोशिश रही कि मेरा सिखाने का जो तरीका था, जब मैंने यहाँ महसूस किया 2015 में आने के बाद कि इतनी भागदौड़ भरी लाइफ में कितने लोग शास्त्रीय संगीत सीखने आते हैं, सो जो भी स्टूडेंट्स आए वो इस वजह से बढ़ते गए क्योंकि उनको मेरा टीचिंग स्टाइल बहुत पसंद आया. बिकॉज थोड़ी सी मैं लाइट की बात करती थी, जैसे मैंने आज हमीर राग सिखाया है उनको और मैंने स्वर बता दिए हैं कि सारे सा गा मधा नी गा सा. अभी उसके साथ अगर मैंने उनको रिलेट कर दिया कि मधुबन मेरा ठिकाना, तो ये जो थोड़ा सा हम लाइट की बात करते हैं उससे बच्चों को एक समझ में आता है कि अरे ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन राग हमें आज पता चला, दिस इज बेस्ड ऑन राग हमीर, तो उनका जो है इंटरेस्ट और बढ़ जाता है कि अरे वाह जरूर हम सीखेंगे. और कुछ भी नहीं आने के बाद भी जब मैं कोई राग सिखाती थी ना तो वो इमिजिएटली सॉन्ग्स बताते थे, मीन्स वो रिलेट कर पाते थे कि अरे मैम यमन राग आपने बताया तो ये सब गाने यमन के हैं विदाउट एनी नॉलेज. तो ये बहुत अच्छा लगता था और इस वजह से बहुत सारे लोग सीखने आने लगे. मुझे लगता है आज के टाइम में हम सिर्फ क्लासिकल की बात करें उसके बजाय अगर हम थोड़ी सी उनको इंटरेस्टिंग तरीके से जानकारी देते हैं तो उनका इंटरेस्ट बढ़ता है.
0: बिल्कुल. अभी आप हम शास्त्रीय संगीत की बात कर रहे हैं तो आप बुक्स भी पढ़ती होंगी, क्योंकि बच्चों को ये भी जानना जरूरी है कि बुक्स तो पढ़ना भी बहुत जरूरी है शास्त्रीय संगीत का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो. बुक्स के बारे में या पढ़ने के बारे में आपका क्या ख्याल है?
1: नहीं, डेफिनेटली थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये दो पक्ष हैं, शास्त्र पक्ष है, कला पक्ष है, भाव पक्ष है. जितना कहते हैं परफॉर्मिंग आर्ट है तो ज्यादातर तो वेटेज परफॉर्मेंस के तरफ रहता है, लेकिन फिर भी जब हम उसमें डिग्री ले रहे हैं तो हम थ्योरी का, हमारे यहाँ जो करिकुलम है उसमें 3 पेपर थ्योरी के हैं,
0: अच्छा
1: 2 प्रैक्टिकल के.
0: ओके.
1: तो उसमें फंडामेंटल आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है, अप्लाइड थ्योरी आ जाता है. बच्चे आजकल थोड़ा पसंद कम करते हैं, लेकिन हमारा ऐसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको शास्त्र के बारे में भी पूरी जानकारी. बिकॉज क्या होगा कि शास्त्र नहीं पता है ना तो वो म्यूजिक को इतने अच्छे से समझ नहीं पाएंगे. तो भरत के नाट्य शास्त्र से लेकर संगीत रत्नाकर क्या था, शारंगदेव जी ने उसमें क्या लिखा है, ये सब विक्रमी पुस्तक मालिका की बंदिशें हैं और सारी चीजें हम उनको बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताते हैं जिससे कि उनकी उनकी रुचि बनी रहे और वो थ्योरी में भी बहुत अच्छे से पढ़ सके.
0: और ऑटोबायोग्राफीज भी, कितने लोगों की ऑटोबायोग्राफीज है.
1: हाँ, कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम क्या पता, हमें पता ही नहीं उनके नाम, हम क्यों पढ़े. लेकिन फिर हम

0: उन्होंने उसके लिए कितना संघर्ष किया और उस जमाने में जब ज्यादा साधन नहीं थे और उन्होंने कितना रिग्रस रियाज करके और वो सब अचीव किया है
1: और आजकल भी ये जमाने में मतलब 21st सेंचुरी में भी अभी राहुल देशपांडे जी है, मंगेश कार्य जी है, उनकी वजह से ये जो यूथ है वो फिर से शास्त्रीय संगीत की तरह बढ़ चुके हैं, ऐसा आपको लग रहा है?
0: बिल्कुल सही कहा आपने। राहुल देशपांडे जी का मैं देखती हूँ कि वो वसंतराव देशपांडे जी के नाती हैं, लेकिन उसके बाद भी संगीत, मुझे ऐसा लगता है कि संगीत में जो हमें अच्छा लगता है वो हमें करना ही चाहिए। तो आज वो फिल्मी गीत भी गा रहे हैं और क्लासिकल भी कर रहे हैं, तो यूथ बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि यूथ आज के जो युवा हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो केवल क्लासिकल की तरफ नहीं है। हम सिर्फ क्लासिकल से बांध के नहीं रख सकते, बहुत मतलब बहुत थोड़े लोग मिलेंगे जो केवल क्लासिकल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जैसे हमारे यहाँ भी मैं देख रही हूँ माया सोमैया में अभी 40+ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो सीख रहे हैं क्लासिकल बिकॉज उनको डिग्री लेना है, लेकिन उनका सबका इंटरेस्ट देखा जाए तो वो मुंबई में एक ही लक्ष्य लेके आए हैं, प्लेबैक सिंगिंग। तो ये हम देख रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हर तरह का गाना आना चाहिए लेकिन शास्त्रीय संगीत का जो बेस है वो तो होना ही चाहिए। कुछ भी गाए वो तभी अच्छा लगेगा जब आपको नॉलेज है, प्रॉपर श्रुतियों का ज्ञान है, तो आप बखूबी किसी भी तरह का संगीत गा सकते हैं।
1: लेकिन वो जो शास्त्रीय संगीत को जो ग्लैमर है, मतलब जो फिल्मी म्यूजिक को जो ग्लैमर है वो शास्त्रीय संगीत को नहीं है। ये जो है इसके लिए वो ये जो यूथ है वो इसलिए अट्रैक्ट होते हैं ज्यादातर फिल्मी संगीत की तरह, जैसे आपने
0: बराबर बराबर। तो मेरा यही इंटेंशन है तेजस्विनी जी कि शास्त्रीय संगीत से जो लोग डरते हैं या जो ऐसा समझते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है या बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, उनकी टेंडेंसी दूर करना। मैंने इसीलिए 2017 से शुरू किया मेरा यूट्यूब चैनल, बिकॉज वो टाइम में पेंडेमिक में काफी मतलब हमारे क्लासेस ऑनलाइन
1: होते थे,
0: हमने सोचा भी नहीं था कभी कि हम ऑनलाइन सिखा पाएंगे शास्त्रीय संगीत, लेकिन वो टाइम ने ये सब सिखा दिया। और उसके बाद जो बंदिशे में सिखाती थी स्टूडेंट्स बोलते थे कि मैम वो हम ढूंढते हैं, क्योंकि आजकल तो गूगल का जमाना है, कोई भी चीज हमने सिखाई वो गूगल करते हैं। तो मैडम नहीं, वो जो आप सिखाते हैं वो हमें यूट्यूब पर नहीं मिलता है, सो प्लीज आप डालिए। तो मैंने उनको कहा कि मुझसे अच्छा काम बहुत लोगों ने किया है, तो कहने लगे नहीं आप जो बंदिशे सिखाते हैं वो नहीं मिल रही है। सो ऐसे स्टूडेंट्स के ही बोलने की वजह से मेरा यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया पेंडेमिक में, और बहुत अच्छा मुझे उसका रिस्पांस मिला। कई लोग यही कहने लगे कि मैम जिनको गुरु नहीं मिल पा रहा अच्छे, तो इस वजह से हम सीख पा रहे हैं। तो वहाँ पर मैंने कुछ राग बेस्ड वीडियोस बनाए हैं और उनके ऊपर बॉलीवुड म्यूजिक में जो सॉन्ग्स आए हैं उनकी भी बात की
1: है। जरूर इसके बारे में आपसे अधिक जानकारी लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर जुड़ते हैं डॉक्टर सुनीता गंगाडे मैडम से। आप सुनते रहिए आचार्य 90 FM।

0: वेलकम आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, यू आर लिसनिंग टू आचार्य 98.5 योर ओन रेडियो। और आज हम डॉक्टर सुनीता गंगारेड्डी मैडम से बातचीत करें। मैम अभी पढ़ते हैं आपके पीएचडी की ओर। पीएचडी में आपने बहुत सारे रिसर्च पेपर, मतलब उनके सब्जेक्ट भी बहुत अलग से हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। और वो म्यूजिक थेरेपी का जो आपने हमारे कॉलेज में भी जो सेशन दिया, जो हम सारे अध्यापकों ने उसको बहुत सराहा, तो उसके बारे में वो आपको वो आइडिया आया कहाँ से कि कैसे लिंक करेंगे? आपने तो मेंशन किया पढ़ाते पढ़ाते वो आइडिया आपको आ गया, तो उसके बारे में हम दर्शकों को थोड़ा सा बता रहे हैं।
1: बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वो मेरे माइंड में आया था, वो मैं जरूर शेयर करूंगी। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल, जिसको एस आई एस कॉलेज षणमुखानंद ने कोलैबोरेशन से ऑर्गेनाइज किया था, और प्लेस नहीं मिल रही थी उनको प्रॉपर।
0: अच्छा।
1: सो हमारे यहाँ सुमैया विद्या विहार ने उनको प्लेस अवेलेबल करवाई थी। तो हमारे यहाँ तब उस समय में सुंदराजन सर के सर थे हमारे यहाँ, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि मैडम आप इसमें रिसर्च पेपर डालिए।
0: अच्छा।
1: इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है। सो जैसे कि मैंने बताया, मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा था म्यूजिक थेरेपी के वजह के ऊपर, तो मैंने उसमें एक रिसर्च पेपर डाला।
0: हाँ।
1: और जब उसको प्रेजेंट करने का टाइम आया,
0: हाँ,
1: तभी मैंने सोचा कि सब लोग ऐसे ही अपने अपने पेपर रीड करते हैं, लेकिन उसमें क्या मजा है।
0: हाँ।
1: हम अगर परफॉर्मिंग एरिया से हैं,
0: हाँ,
1: तो परफॉर्मिंग आर्ट से, तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से करना चाहिए। तो मैंने उसी रिसर्च पेपर को प्रैक्टिकली, और जो मैंने लिखा था उसमें, उसको मैंने प्रैक्टिकली गा के बताया।
0: अच्छा।
1: और वो साउथ इंडियन कम्युनिटी के सारे ऑडियंस थे।
0: ओके।
1: तो लेकिन इतना उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया।
0: हाँ।
1: और वहीं से मुझे पहला कॉन्फिडेंस आया।
0: हाँ।
1: कि ये बहुत अच्छा है, और वो करके मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। बिकॉज
0: हाँ।
1: हम सब कुछ अपने लिए ही करते हैं, लेकिन ऐसा लगा कि बिना औषधि के अगर हम किसी को थोड़ा भी रिलैक्स फील करवा सकते, तो ये बहुत अच्छी बात है। और तब से मैंने शुरू किया, और आज मुझे लग रहा है कम से कम 10 से 12 जगह पर मेरे ये म्यूजिक थेरेपी के सेशन हो चुके हैं।
0: मैंने भी सुना है, मतलब प्लांट्स ग्रो होते हैं, ये जो पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल्स में ज्यादा करके म्यूजिक डाला जाता है ताकि वो सुन सके, और उसमें वो ज्यादा रिकवर भी ज्यादा फास्ट होते हैं। तो ये म्यूजिक थेरेपी एक अच्छा, इट वर्क्स इन डे टू डे लाइफ। वो भी सुनते, अगर सुबह में भी हम जब गाना सुनते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है, वो भी है। तो आप थोड़ा म्यूजिक थेरेपी का जो आपका सेशन है उसका थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हमें देंगे?
1: जरूर जरूर। म्यूजिक थेरेपी में मैंने फिर जब मुझे इंटरेस्ट आया, तो मैंने थोड़ा सर्च किया कि ऑलरेडी कितना काम हुआ है इसके ऊपर। तो मुझे शशांक कट्टी जी, जो मुंबई में म्यूजिक थेरेपी पर बहुत काम कर रहे हैं, उनका मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्हीं से थोड़ा सा मैंने उनके वीडियोस के थ्रू ही,
0: अच्छा,
1: मैंने थोड़ा सा रेफरेंस लिया, और फिर मैंने ये फाइंड आउट किया कि कौन से प्रॉब्लम्स के ऊपर कौन से राग इफेक्टिव हैं, और उन रागों का क्या प्रभाव है। सो मैंने कुछ कॉमन डिसऑर्डर चूज किए, और उसके ऊपर इफेक्टिव रागों को चूज किया, और फिर उसको इंटरेस्टिंग तरीके से, बिकॉज हम अपनी पसंद के अनुसार संगीत सुने तो वो ज़्यादा काम करेगा। सो उसकी एक क्लासिकल बंदिश, अगर आप मराठी सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो उसको मराठी गाने, भावगीत, नाट्य गीत, और कुछ फिल्मी गीत, तो हर एक की पसंद के अनुसार मैं वो गाने बताती हूँ। और जब मैं उनको गा कर बताती हूँ, और की तरह से हम इस प्रोग्राम को लेते हैं, ऑडियंस भी बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि उसमें उनका भी कंट्रीब्यूशन हो जाता है। सो इस तरीके से ये सेशन सोचा ही नहीं था और शुरू हो गए, और बहुत जगह पर होते जा रहे हैं, और लोगों को पसंद आ रहा है मेरा काम।
0: जी, तो थोड़ा वापस से गाना सुनना चाहेंगे? तो इसका रिलेटेबल थोड़ा, मतलब शास्त्रीय संगीत और फिल्मी म्यूजिक।
1: जैसे मैं म्यूजिक थेरेपी में स्ट्रेस के लिए राग यमन की बात करती हूँ।

0: इंटरव्यू के, तो वो पूछना चाहूंगी कि आजकल के बच्चे बहुत, मैं ये नहीं करना चाहूंगी क्योंकि इट इज नॉट देयर फॉल्ट कि वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं टेलीविजन के जो रियलिटी शोज है उनके ऊपर, क्योंकि उनके मतलब छोटे से समय में उनको नेम फेम मनी सब मिल जाता है. तो आप रियलिटी शो के जज भी रह चुके होंगे या फिर कहीं पे भी आप प्रतियोगिता में जाते हैं तो आप परीक्षक के रूप में जाते होंगे, तो बच्चों को आपको क्या मतलब एडवाइस देना है, क्या मार्गदर्शन करना है कि रियलिटी शो को आपको किस तरह से देखना चाहिए?
1: रियलिटी शो से डेफिनेटली बहुत क्लासिकल संगीत का रुझान बढ़ा है क्योंकि जब बच्चे क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग्स गाते हैं तो जैसे फिल्मों में शास्त्रीय संगीत आने के कारण शास्त्रीय संगीत सीखने बहुत लोग आते हैं, जो मेरा विषय भी है पीएचडी. सो इसी तरीके से रियलिटी शोज में देख के बच्चों को बहुत लगता है अरे मैं भी उनके तरह गाऊं, इसलिए लोग ट्रेनिंग लेते हैं थोड़ा, लेकिन वो उतना सा मुझे लगता है सफिशिएंट नहीं है क्योंकि जो थोड़े समय के लिए जो एक फेम मिलता है वो थोड़े समय बाद ही खत्म भी हो जाता है. अगर आपको लंबे समय तक टिकना है तो आपको प्रॉपर गुरु के साथ, गुरु के मार्गदर्शन में सालों तक सीखना होता है. मैं कहूँगी कम से कम 5-10 साल तो आपको उसका प्रॉपर गाइडेंस लेना होता है किसी गुरु, और उसके बाद भी रियाज करना होता है क्योंकि सीखना एक तरीके से सीख लिया लेकिन जब तक हम उसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे, जिस तरीके से हम कहते हैं खाना खाना ही सफिशिएंट नहीं है, उसको डाइजेस्ट करना है इम्पॉसिबल, उसी तरीके से गुरु ने सिखा दिया है लेकिन जब तक हम उसको घंटों बैठ के रियाज नहीं करेंगे तब तक चीज़ें खुद से नहीं निकलेगी. क्योंकि राग है ना, जब तक वो आत्मसात नहीं हो जाता तब तक हम उसका इम्प्रोवाइजेशन बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे. तो बच्चों में वो कमी है आजकल, उनको लगता है कि नहीं सब कुछ इंस्टेंट मिल जाए हमें. तो बहुत अच्छी कई प्रतिभाएं होती है जिनके पास इतना अच्छा सब कुछ है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं या रियाज नहीं करते हैं, गुरु के पास नहीं जाते हैं, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता है. तो मेरा यही गाइडेंस है कि प्रॉपर गुरु के पास शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा लेनी चाहिए.
0: और अंत में ये पूछना चाहूंगी कि आजकल लाइव कॉन्सर्ट ज्यादा होते हैं, मतलब इंडिया में भी होते हैं बाहर भी होते हैं, और लाइव कॉन्सर्ट में ज्यादा आशा जी बहुत मतलब उन्होंने ज्यादा लाइव कॉन्सर्ट को ये किया है, तो आपका लाइव कॉन्सर्ट मतलब कैसी तैयारी करना चाहिए अगर एक परफॉर्मर है, अगर लाइव कॉन्सर्ट में जैसे शंकर महादेवन जी का भी आपने जिक्र किया, वो भी इतना मतलब अच्छे से वो लाइव कॉन्सर्ट को मैनेज करना भी एक कला होती है. तो आप लाइव कॉन्सर्ट को अगर एक लाइव परफॉर्मर बनना है तो उसके लिए स्टेज परफॉर्मर बनना है तो बच्चों ने कैसी तैयारी करनी चाहिए?
1: सबसे पहले तो अगर आप संगीत में रुचि रखते हैं और आप परफॉर्मर परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी तैयारी हर तरह से होनी चाहिए. बिकॉज ऑडियंस कहाँ, कैसे ऑडियंस है, एक आर्टिस्ट को मुझे लगता है कि हर तरह से तैयार रहना चाहिए. कि अगर परवीन सुल्ताना जी का मुझे एक बार याद है, एक कॉन्सर्ट मैंने अटेंड किया था कि मैं एक चीज़ गाती हूँ और दर्शकों की नज़रों से समझ जाती हूँ कि दर्शक क्या चाहते हैं, है ना. तो प्योर क्लासिकल आर्टिस्ट हैं लेकिन धीरे से वो टर्न हो जाते हैं, फिर कुछ थोड़ा सा झप ताल या रूपक ताल की कोई बंदिश ले लेंगे बहुत बड़ा ख्याल डिटेलिंग ना करते हुए, और फिर वो ठुमरी या दादरा पे आ जाती हैं या जैसे वो गाती हैं हमें तुमसे प्यार कितना. तो ऐसे ही राशिद खान जी का भी मैंने देखा कि राशिद खान जी भी हमेशा देख लेते थे कि ऑडियंस कैसी
0: है.
1: प्रॉपर क्लासिकल सुनने वाली ऑडियंस है तो वो 2 घंटा भी गाएंगे क्लासिकल, लेकिन जब उनको पता है कि नहीं ऑडियंस और आर्टिस्ट वही खड़ा होता है जो समझ जाए कि हाँ ये ऑडियंस क्या चाहती है, इनका टेस्ट क्या है. तो मुझे लगता है कि कॉन्सर्ट करने के लिए हमें उस तरीके की तैयारी रखनी चाहिए कि ऑडियंस के मुताबिक क्या. वैसे तो कहा जाता है कि शास्त्रीय संगीत किसी को रिझाने के लिए नहीं है, ये तो ईश्वर की आराधना के लिए है. और आजकल का लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे टाइम बदल रहा है कि आज हम सिर्फ उसी भावना को लेकर नहीं चल सकते. बिकॉज हमें अगर कॉन्सर्ट करना है तो हमें थोड़ा सा इस बात के लिए अवेयर रहना चाहिए कि ऑडियंस क्या चाहता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है.
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनीता जी फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन आचार्य 90 FM. और अभी हम इस इंटरव्यू का आई थिंक एंड आपके सुरीले गानों से करते हैं. आई रिक्वेस्ट यू टू से समथिंग.
1: मैं एक फिल्मी गाना सुना देती हूँ थोड़ा सा, जो मुझे बहुत पसंद है.

शाम रोक लई रोक लई रोक लई ढाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई सरक सरक सरक।

भरी मटकी दधकी भरी मटकी दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच आहट सुन आहट सुन आहट सुन जियरा गयो धड़क धड़क, धड़क।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शब्बीर शेख लेके आया हूँ कहानियों के गुल्लक में एक और कहानी। कहानी का नाम है एक हफ्ते की जिंदगी। कुछ कहानियाँ हमें जिंदगी का ऐसा सबक दे देती है जो शायद हमने कभी सोचा ही ना हो। हम जिंदगी में इतनी बड़ी परेशानियों में होते कि हम कभी सोच भी नहीं पाते कि उन परेशानियों का हल एक छोटी सी चीज में छुपा हो। तो ये कहानी भी एक ऐसी है कि इतनी बड़ी परेशानियां कैसे हल हो जाती है। तो चलो देखते हैं। सुबह का वक्त था, पहाड़ों के बीच एक पुराना सा आश्रम था। ना कोई शोर, ना शहर की भागदौड़, बस हवा की हल्की सी सरसराहट और पेड़ों पर बैठे पंछियों की आवाज। आश्रम के बाहर एक छोटा सा पत्थर का बोर्ड लगा था जिसमें बस दो शब्द लिखे थे, शांति धाम। यहां रोज लोग आते थे, कोई दुख लेकर, कोई सवाल लेकर, कोई बस सुकून की तलाश में। और आश्रम के बीच एक छोटे से चबूतरे पर बैठे थे संत आनंदगिरी महाराज। उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। बाल सफेद थे लेकिन चेहरे पर एक अजब सा तेज था, एक अजीब सी रोशनी जिसे सिर्फ कोई महापुरुष या कोई ऐसे संत महात्मा में देखा जाता है जो सिद्धि प्राप्ति कर चुका हो। आंखों में इतनी शांति थी कि जो भी उन्हें देखता उसका मन कुछ देर के लिए शांत हो जाता। लोग कहते थे ये संत सिर्फ बात नहीं करते, दिल पढ़ लेते। उस दिन भी सुबह का वक्त था, संत आनंदगिरी महाराज चबूतरे पर आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हुए थे। तभी आश्रम के गेट पर एक काली लग्जरी कार रुकी। ड्राइवर जल्दी से उतरा, दरवाजा खोला। कार से एक आदमी बाहर आता है, महंगे कपड़े, ब्रांडेड वॉच, पॉलिश शूज, लेकिन चेहरे पर सुकून नहीं। उसका नाम था राघव मेहता, शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, होटल्स, मॉल्स। उसके पास इतनी प्रॉपर्टी थी कि लोग उसका नाम इज्जत से लेते थे। लेकिन अगर कोई उसके करीब जाता तो उसे समझ जाता कि वो अंदर से कितना टूट चुका है। राघव धीरे धीरे चलते हुए आश्रम के अंदर आया। उसने आसपास देखा, कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे। कुछ लोग शांत से दर्शन ले रहे थे और कुछ दर्शन लेने के लिए लाइन में खड़े थे। लेकिन राघव को किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था, वो सीधा चबूतरे की तरफ बढ़ गया। संत आनंदगिरी महाराज ने आंखें खोली, उन्होंने राघव को देखा और बस एक पल में ऐसा कुछ हो गया कि राघव आनंदगिरी महाराज के इशारों पर नाचने लगा। जो अपने पैसों के घमंड से, अपने ईगो से भरा पड़ा आदमी, उसे आनंदगिरी महाराज ने कहा इधर आओ बेटा। राघव बिना कुछ बोले चुपचाप चबूतरे के पास बैठ गया। कुछ पल तक दोनों चुप रहे, फिर आनंदगिरी महाराज ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारी आंखों में बहुत सारे सवाल हैं, पूछो। राघव ने हल्की सी और थकी हुई स्माइल देकर कहा, बाबा सवाल नहीं, बोझ। महाराज ने ध्यान से उसकी तरफ देखा और कहा, बताओ क्या बोझ है। राघव ने गहरी सांस ली, बाबा मेरे पास सब कुछ है, पैसा, नाम, इज्जत, पावर, लोग मुझे सक्सेसफुल कहते हैं। वो रुक गया, फिर धीरे से बोला, लेकिन मुझे लगता है मैं अंदर से खाली हूं। आनंदगिरी महाराज चुप रहे, राघव बोलता गया, रात को नींद नहीं आती, हर वक्त डर लगा रहता है, कहीं कोई मुझे धोखा ना दे दे, कहीं कोई मेरी प्रॉपर्टी ना छीन ले, भाइयों से कोर्ट केस चल रहा है, बहन से बात बंद है, दोस्तों से झगड़ा हो चुका है। उसकी आवाज थोड़ी भर गई, बाबा मेरे पास इतना पैसा है फिर भी मैं खुश क्यों नहीं। महाराज ने कुछ पल तक उसको देखा, फिर पूछा, सच सुनना चाहते हो बेटा।
राघव ने तुरंत सर हिलाया, हाँ हाँ बाबा मैं सच सुनना चाहता। आनंदगिरी महाराज ने कहा, बेटा सच बहुत कड़वा होता है, शायद इस सच को तुम पचा भी ना पाओ, और शायद ये सच सुनकर तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसकना चाहिए। पर राघव परेशान था, उसके पास कोई और उपाय नहीं था, उसके पास कोई दूसरा सलूशन नहीं था। वो बस इतना चाहता था कि जैसे तैसे उसके बस सवालों का उसे जवाब मिल जाए, उसके प्रॉब्लम्स का उसे सलूशन मिल जाए। राघव ने जब उनसे कहा कि तुरंत जी बाबा मुझे जवाब बता दीजिए, मैं क्यों परेशान हूँ, मुझे सच बता दीजिए, तो महाराज ने कहा कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। राघव का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। मतलब? महाराज ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता बचा हुआ है। राघव के पैर के नीचे की जमीन की सकी एक पल में उसे उसके वो बचपन से लेके अब तक के वो सारे दिन एक पल में उसे नजर आ गए। एक हफ्ता? राघव ने कहा, बाबा क्या मैं मरने वाला हूं? बाबा ने कहा, हाँ बेटा, इस एक हफ्ते के अंदर तुम्हारे जितने बचे हुए काम हैं उन कामों को पूरा कर लो, और ये एक हफ्ता तुम ऐसे जियो जैसे कोई नया बालक जब जन्म लेता है तब उसे ना दुनिया ना किसी चीज की पड़ी होती है, वो बस पवित्र होता है, वो बस देना जानता है, वो बस शांत रहना जानता है, वो बस खेलना जानता है, वो बस बस कोमल होता है, बस सच्चा होता है, और तुम ये अपनी जिंदगी का ये एक हफ्ता बस अपने आप से अपने प्रति सच्चे रहो।

0: वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शफीर। हम सुन रहे थे एक कहानी जिसका नाम था एक हफ्ते की जिंदगी, जिसमें आपने अभी सुना कि किस तरीके से आनंदगिरी महाराज ने राघव से कहा कि उसके पास सिर्फ एक हफ्ते की जिंदगी बची हुई है और वो एक हफ्ते अपनी जिंदगी के ऐसे जिए कि वो बहुत सच्चा हो, अपने आप से सच्चा रहे, सच बातें करे, सच चीज करे और जितना हो सके बस सच में रहे और अपनी इस बची कुची जिंदगी को बस वो सच के सहारे जिए। तो देखिए, सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। राघव का बंगलो शहर के सबसे महंगे एरिया में था। ह्यूज ग्लास वॉल्स, इटालियन मार्बल फ्लोर्स, स्विमिंग पूल, सर्वेंट, सिक्योरिटी, सब कुछ था। लेकिन उस रात उसे सब कुछ अजीब लग रहा था। वो अपने बेडरूम में अकेला बैठा था, डिम लाइट जल रही थी, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता। उसने अपने आप से पूछा, अगर सच में मेरी जिंदगी बस एक हफ्ते की है, मैं ये एक हफ्ते में क्या करूंगा? उसने सोचा और अचानक से उसके दिमाग में एक चेहरा आया। वो चेहरा था उसके बड़े भाई। सालों से दोनों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा था। कोर्ट में केस चल रहे थे, लॉयर्स, दलीलें, एक दूसरे पर इल्जाम, और यही प्रॉपर्टी के चक्कर में राघव की फैमिली बट चुकी थी, आधे इधर आधे उधर। यही प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ने उनकी पूरी फैमिली को तोड़ दिया था। उनके घर में ना शांति थी, हर महीने में कुछ ना कुछ लॉयर्स, कुछ ना कुछ ये वो, इन चीजों को लेकर राघव का बड़ा भाई और राघव दोनों बहुत दिनों से परेशान चल रहे थे। राघव ने आंखें बंद कर ली। एक हफ्ता मैं क्या लेकर जाऊंगा अपने बड़े भैया के पास? अगले ही पल उसने फैसला कर लिया, मैं कल सुबह सब कुछ ठीक कर दूंगा। राघव ने जैसे मान्य प्रण ले लिया कि वो अगले दिन सुबह जाकर उसके भाई के बीच में और उसके बीच में जो इतने दिनों से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था वो उसे सुलझा दूंगा। अगली सुबह राघव अपने भाई अरविंद के घर आया, दरवाजा खटखटाया। अरविंद ने दरवाजा खोला, दोनों भाई एक दूसरे के सामने थे, एक दूसरे को देखते रहे। सालों की दूरी उनकी आंखों में नजर आ रही थी। अरविंद ने थोड़े ठंडे आवाज में उनसे बोला, क्या काम है? राघव की आंखों में आंसू आ गए। भाई मुझे माफ। अरविंद हैरान रह गया, तुम ठीक हो राघव? राघव ने कहा, भाई मुझे घर में नहीं बुलाओगे? हाँ हाँ अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। राघव और अरविंद दोनों चेयर पर बैठ गए। राघव की आंखें पश्चाताप से भरी हुई थी। उसके दिल पर मानो एक अजब सा बोझ था। वो बोझ के सहारे जैसे वो जी रहा। अरविंद ने कहा, राघव पानी पी। राघव ने पानी पिया। भैया ये फाइल प्रॉपर्टी केस की है, भैया मैं ये केस वापस ले रहा हूं। अरविंद शॉक में था। राघव तुम ठीक हो? कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ? कुछ मतलब कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? नहीं भैया, बस मैं ये केस वापस ले रहा हूँ, मुझे अब आपसे नहीं लड़ना है। ये प्रॉपर्टी, ये बंगला, ये सब आप रख लो, मुझे नहीं चाहिए कुछ, बस ये आप रख लो, मैं केस वापस ले लेता हूँ, मैं कोर्ट में अपने वकील से कह दूंगा कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, मैं जो पेपर पे आप बोलोगे उस पेपर पे साइन कर दूंगा, बस मुझे माफ कर दो, बस मुझे माफ कर दो। राघव ये कहते कहते रो पड़ा और रोते रोते वो अपने भाई के पैरों में गिर गया। अरविंद को ये देखा नहीं गया, उसने राघव को उठाया, अपने गले से लगाया और कहा कि नहीं मेरे भाई रोते नहीं हैं, शांत हो जा, मैंने तुझे माफ किया, शांत हो जा मेरे भाई, मैंने तुझे माफ किया। और ये कहते हुए दोनों भाई एक दूसरे के गले लग गए। उस दिन राघव का मन हल्का हुआ, उसके दिल पर जो बोझ था वो भी हल्का हुआ। अब राघव ने डिसाइड कर लिया था कि उसके जितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो इस एक हफ्ते में उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। जितने लोगों से उसके डिस्प्यूट चल रहे हैं, जितने लोग उससे नाराज चल रहे हैं, जितने लोग उससे परेशान हैं, उन सारे लोगों को वो जाकर मनाएगा, उनसे माफ़ी मांगेगा, उनकी जो परेशानियां हैं या जितनी भी तकलीफें उन्हें हुई है उन सारी चीज़ों के लिए वो जाकर उनसे माफ़ी मांगेगा। और इसी माफ़ी मांगने के अगले सिलसिले में अगला नंबर था उसकी बहन का।
1: अभी न जाओ छोड़ कर,

वेलकम दोस्तों, हम सुन रहे थे राघव की कहानी। जैसे कि उसने जाकर अपने भाई से माफी मांग ली, और अगला नंबर था वो जाने वाला था अपनी बहन के घर अपनी बहन से माफी मांगने। तो राघव अपनी बहन के घर पहुंचता है और डोर बेल रिंग करता है, और जैसे डोर खुलता है राघव अपनी बहन नेहा के चरणों में गिर जाता है और उसे कहता है, बहन मुझे माफ कर, मैंने बड़ी बदतमीजी से तुम्हारे साथ बिहेव किया था, तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, मैंने तुमसे तुम्हारी प्रॉपर्टी छीन ली, तुम्हें कुछ दिया नहीं और बस हर वक्त सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा, बहुत सेल्फिश था मैं, पर मैं अब सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, मैं नहीं रखना चाहता तुम्हारा कुछ, ये फाइल जो है मेरे पास ये तुम रख लो, इसमें तुम्हारी प्रॉपर्टी जो है वो मैंने तुम्हारे नाम कर दी है, ये जो तुम्हारा हिस्सा है ये मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है, बस बहन अब ये रख लो और मुझे माफ कर दो मेरी गलती। राघव को रोता हुआ देखकर उसकी बहन नेहा भी रोने लगी, और उसने जैसे तैसे अपने भाई को शांत कराया। नेहा ने अपने भाई को माफ किया और दोनों चाय पीने लगे। चाय पीते पीते राघव ने सोचा कि अगले दिन वो अपने दोस्त कबीर और समीर इन दोनों से सॉरी कहेगा, जो उसके बिजनेस पार्टनर्स थे और उसके बचपन के दोस्त भी थे। तो अगली सुबह राघव अपने घर से निकलता है, कबीर और समीर के ऑफिस में जाता है और उनसे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। दोनों उससे मिलने के लिए आते हैं बाहर, तीनों जाते हैं कैफेटेरिया में कॉफी पीने, जहाँ समीर और कबीर दोनों बैठे, और दोनों को देखते हुए राघव बड़े भारी आवाज में और बड़ी पश्चाताप के साथ, उसकी आंखों में वो पश्चाताप नजर आ रहा था, और उस पश्चाताप के साथ वो कबीर और समीर से सॉरी कहता है। जब राघव सॉरी कहता है तो कबीर और समीर देखकर शॉक हो जाते हैं और हंस पड़ते हैं, पागल है क्या यार, तू इतने साल के बाद मिलने आ रहा है और सॉरी बोल रहा है, हमने तो कभी इन चीजों को अपने दिल में रखा ही नहीं था, तू हमारा पहले भी दोस्त था, तू हमारा आज भी दोस्त है और तू हमारा हमेशा दोस्त रहेगा, इन चीजों से हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी, हाँ कुछ डिस्प्यूट्स हो गए थे बिजनेस को लेकर हमारे बीच में, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये धीरे धीरे सारी चीजें होते गई, राघव के दिल पर जो बोझ था वो धीरे धीरे उतरने लगा था। दिन गुजरते गए, राघव हर दिन किसी ना किसी से मिलता, किसी ना किसी से माफी मांगता, किसी ना किसी को गले लगाता, किसी को शुक्रिया बोलता। अब वो हर रात अच्छा महसूस करने लगा था, उसके अंदर की बेचैनी कम हो रही थी, उसे नींद आने लगी थी, दिल में एक अजीब सी शांति आने लगी थी। फिर आया सातवां दिन, सुबह राघव की आंख, उसने घड़ी देखी, फिर अपने हाथ देखे, फिर आसमान की तरफ देखा, मैं जिंदा हूं। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई, वो तुरंत कार में बैठा और सीधे आश्रम की तरफ चला गया। संत आनंदगिरी महाराज चबूतरे पर बैठकर ध्यान कर रहे थे, राघव भागते हुए उनके पास आया, बाबा बाबा मैं जिंदा हूँ। संत महाराज ने आंखें खोली, राघव खुशी से बोल पड़ा, मैं जिंदा हूँ, आपकी दुआ ने मुझे बचा लिया, अगर आप नहीं होते तो मैं मर जाता। संत महाराज हल्के से मुस्कुराए, फिर शांत आवाज में बोले, बेटा तुम मरने वाले तो थे ही नहीं। राघव हैरान रह गया, मतलब? संत बोले, मैंने तुमसे झूठ बोला। राघव बिल्कुल चुप हो गया। महाराज ने आगे कहा, तुम्हारी परेशानी मौत नहीं थी, तुम्हारी परेशानी तुम्हारा अहंकार था, तुम्हारे ग्रजेस थे, तुम सबसे लड़कर जी रहे थे,
इसीलिए तुम्हारा दिल भारी था और वो सब मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था। जब तुम्हें लगा कि जिंदगी सिर्फ एक हफ्ते की बची है तो तुमने सब कुछ छोड़ दिया, ईगो छोड़ दिया, लालच छोड़ दी, झगड़े छोड़ दिए, इसलिए तुम्हें सुकून मिल गया। राघव की आंखों से आंसू निकल गए। आनंदगिरी महाराज मुस्कुराए और धीरे से बोले, बेटा अगर इंसान हर दिन को अपना आखिरी दिन समझकर जी ले तो जिंदगी कभी भारी नहीं लगेगी। राघव उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और वहां से जब वो निकल पड़ा तो इस बार आश्रम से निकलने के बाद वो एक बिल्कुल नया आदमी था, एक ऐसा इंसान जिसके दिल में ना कोई ईगो था ना कोई छल कपट। अब उसने एक ऐसे रास्ते को थामा था जो सच का था और उस रास्ते पर वो आगे बढ़ना चाहता था। तो दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी हमारी परेशानियाँ बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन उन परेशानियों का हल काफी छोटा होता है। ठीक उसी तरह जैसे ताला चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो खुल जाता है महज एक छोटी चाबी से। तो हम अक्सर हमारी जिंदगी को ऐसे जीते हैं कि हमारा आखिरी दिन कभी आएगा ही नहीं, पर हम ये नहीं जानते कि मृत्यु ही आखिरी सत्य है और इस सत्य से भागा नहीं जा सकता, इसे हम टाल भी नहीं सकते। बस इस सत्य से हम थोड़े दूर हैं। ये सत्य को हमें कभी ना कभी महसूस करना है, इस सत्य की ओर हमें कभी ना कभी जाना है। तो बस इस कहानी का अंत करते हुए मैं आपसे यही कहूंगा कि हमेशा सच के साथ रहे, सत्य के मार्ग पर चले, क्योंकि सत्य ही हमें परमेश्वर की ओर लेके जाएगा, सत्य ही हमें परमेश्वर का दर्शन कराएगा, सत्य से ही परमेश्वर की प्राप्ति होगी और सत्य से ही हमें सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, हमने सुनी एक हफ्ते की जिंदगी की कहानी और इस कहानी का हो गया है अंत। हम मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, लेके आएंगे एक नई कहानी जिसमें होंगी कुछ मजेदार किस्से, कुछ कहानियां, कुछ शब्द, कुछ कहानियां, कुछ कविताएं और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शब्बीर शेख लेता हूँ आपसे अभी विदा। अलविदा।

नमस्कार श्रोताओं, आचार्य 90 FM पर मैं नीलू आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। आज इस मंच पर आकर अपनी कहानी आप सबके साथ साझा करने का अवसर पाकर मैं बेहद खुशी और आभार महसूस कर रही हूँ। शब्द मेरे लिए सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं बल्कि भावनाओं का एक सच्चा आईना है। कहते हैं जीवन रिश्तों से बनता है और रिश्ते मोह के उन अदृश्य धागों से जो हमें बांधते भी हैं और संभालते भी। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ मोह के धागे, वो केवल एक कहानी नहीं है बल्कि उन भावनाओं का ताना बाना है जो हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं मौजूद है। कहानी मोह के धागे। सुनो, जो बेकार का सामान हो यही छोड़ देना। तुम्हें कबाड़ जोड़ने की बहुत आदत है, अलमारी से कपड़े निकालकर सूटकेस में भरते हुए शौर्य ने कहा। छटनी ही तो कर रही हूँ, सौम्या की आवाज भीगी हुई थी, आंखें बार बार छलक रही थी। पिछले वर्ष फ्लैट बुक करा दिया था।

जो अब मिल गया था, घर छोड़ना था अब। पर सौम्या का मन दरों दीवारों में, आंगन में, घर के हर कोने में अटका हुआ था। गहरी श्वास छोड़ते हुए उसने पुराना लोहे का संदूक खोला, दादी सास का। हर बार बरसात के बाद वह उसमें धूप लगाती, अखबार बिछा करीने से फिर सामान लगा देती। उसी में उसकी सास ने भी अपनी कुछ निधियां समेट कर रख दी थी। उसमें शौर्य के बचपन की निशानियां भी थी, नजरबट्टू, पहला धागा, छठी के कपड़े। सास की आवाज जैसे फिर उसके कानों में गूंज उठी, उसे दिखाते हुए बोली थी, पैदा होते ही 4 दिन बाद ही शौर्य को पीलिया हो गया था। तब दवा तो होती नहीं थी, झाड़ फूंक ही होती थी। तेरे ददिया ससुर बालाजी से ये धागा लाए थे, बहू उनकी कृपा से ही बचा था मेरा बच्चा, कहकर चुप हो गई थी और माथे से लगाकर उसी रेशमी कपड़े में लपेटकर वापस रख दिया था। क्या करूं, कैसे फेंक दूं? नहीं नहीं, सौम्या के हाथ कांप गए। उसे लगा जैसे शौर्य को ही फेंक रही हो। मन कांप उठा। उसी के नीचे सौम्या ने अपने दोनों बच्चों के कपड़े भी रख दिए थे, परंतु उन कपड़ों को देने में उसकी आत्मा हिल जाती थी। उसने सब वापस रख दिया। ओह माँ, आप समझती क्यों नहीं, इतना सब नहीं जा सकता फ्लैट में। ये बड़े बड़े लोहे के कबाड़ कहाँ रखेंगे, इन्हें तो आप कबाड़ में बेच दीजिए। शुभम झुंझलाया, पुराने सामान का करना क्या है, कबाड़ में बेच दो, दे दो किसी को। शुभम ने गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहा, फिर पापा से बोला, मैं फ्लैट की तरफ ही जा रहा हूँ, आपके और श्रेया के कमरे का फर्नीचर सेट करवा देता हूँ। ठीक है, शौर्य ने कपड़ों की अटैची बंद की और सौम्या से कहा, जो कपड़े अलमारी में टंगे रहे हैं उनको अलग बांध देना, मैं फैक्ट्री में मजदूरों को दे दूंगा। सौम्या चुप रही। क्या सच में अब इन चीजों की कोई जगह नहीं, क्या फ्लैट में रहने से इंसान भी बदल जाते हैं, या नवीनता के एहसास से सब कुछ बदल गया है। वह तो बहुत छांटने पर कुछ ही साड़ी निकाल कर काम वालों को दे पाई है, जबकि शुभम के कमरे में नौकर प्रतिदिन थैले भर भर कर ले जा रहे हैं। उसने तो पुराने सूटकेस तक दे दिए, उसमें ही हर चीज से जुड़ने का, चिपके रहने का एहसास क्यों है, उसमें ही मोह अधिक है या आज के बच्चों में जुड़ाव नहीं है। धीरे धीरे सामान बटने लगा, पड़ोसियों में, काम वालियों में, वह हर चीज में पीढ़ियों की छाप देख रही थी, और बाकी सब सिर्फ कबाड़, केवल कबाड़। सौम्या ने फिर संदूक खोला और उसने नजरबट्टू और छोटा झबला चुपचाप से अपने पर्स में रख लिया। ये कैसे छोड़ दूं? बच्चों की नहीं नहीं, बहुत मनोतियों से पाया है, ये तो रहेंगे मेरे साथ, मेरे जीते जी रहेंगे मेरे साथ। शौर्य ने पड़ोस से नीला भाभी को बुला लिया। भाभी देख लो, आपके मतलब की कोई चीज को तो ले लो। नीला भाभी जल्दी जल्दी एक एक चीज पर को देखती और घर पहुंचाती। ये अचार के मर्तबान भी चले गए, आंगन की धूप भी, छत भी, अब फ्लैट में कहां अचार पड़ेगा। शुभम हंसा था, माँ कल सब कुछ तो बाजार में मिलता है। शुभम माँ की ना समझी पर खींच उठा। सौम्या फिर ख्यालों में खो गई। सास जी इसी आंगन में एक एक चीज मांगती, जोड़ती, फिर अचार अभियान शुरू होता। मिर्च मसाले तेल की गंध धोने पर भी हाथों से नहीं जाती थी। उस समय वह बहुत झुंझलाती भी थी। अम्मा जी आज ये सुबह से ही अचार का झमेला ले बैठी, मुझे तो आज बाजार जाना था। वह बड़बड़ाती पर सामान्य चेहरा ले अचार डनवाती
कि दोनों काम हो जाएंगे। जब तक उसके हाथ पर चल रहे हैं तब तक तो वह कर ही रही है, पर फ्लैट में ये सब नहीं होगा, कहां धूप में रखेगी, छत भी तो नहीं है। ऊपर से कहते हैं, माँ नए साथ के साथ चलना सीखो, कब तक चिपकी रहोगी इन सब से। शुभम हंसा था, बहू ने भी व्यंग से होंठ टेढ़े कर लिए, तो वह खिसिया गई, दो बूंद आंखों में भरी फिर सूख गई। पता नहीं तुम मोह कब छोड़ोगी, शौर्य ने उसके हाथ को सहलाते हुए प्यार से समझाया। तुम किसके लिए करना चाहती हो बताओ तो, तुम्हें परवाह नहीं है तो तुम क्यों अपनी जान खपाती हो। बच्चों को उनकी जिंदगी जीने दो, हम साए हैं, साए को साए में मिलाने की कोशिश मत करो, साया नहीं ढकेगा, खुद अपना वजूद खो जाएगा। ठीक कहते हैं, सौम्या चुप हो गई, शायद सच था, उसका गला भर भर आ गया, पर दिल मान कहां रहा था। उन सब चीजों पर न जाने कितनी पुश्तों के हाथों की छाप थी, वह धरोहर नहीं संभाल पाई। क्या वंशवेल ने अपनी आधार बदल दिया या जमीन बदल दी, नेह गंध की डोर क्या आगे बंधी रहेगी। आंखों से धार बहकर उसके पल्लू को भिगो गई। सब कुछ टूटता है, नए के लिए स्थान पुराने के हटने पर ही बनता है, पर निशान तो रह जाते हैं, यहाँ तो निशान भी मिट रहे हैं, उसके जाने के बाद क्या रह जाएगा। कुछ साड़ी ब्लाउज जिन्हें नेहा श्रेया स्प्रह सी उठाकर काम करने वाली बाइयों को दे देगी और उसका वजूद मिट जाएगा। शौर्य दादी परदादी की बातें जब सुनाते हैं तब उनका चेहरा कितना प्रफुल्लित होता है। दादी के हाथ के तिल गुड़ के लड्डू, माँ के हाथ के मेथी के पराठे, क्या शौर्य कभी भूल पाए हैं। क्या वह भी अपने पोते पोतियों में मन में वह स्थान बना पाएगी, नहीं, उसका अस्तित्व तो ब्रेड बटर सैंडविच फास्ट फूड ने ही समेट दिया है। आखिरी बार जीने से उतरने में उसका दिल बैठा जा रहा था, सब उसे पागल न समझ बैठे, इसलिए सबसे छुपकर उसने घर की दीवारों को छुआ, हर कोना हर याद हर लम्हा। सीढ़ियों के पास पड़ी बेटी की पुरानी गुड़िया उठाई, जिसको बेटी ने रुई भर भर कर बनाया था, सोते जागते जिसे वह कभी छोड़ती नहीं थी, आज वह भी छूट रही थी। आंसू पोंछकर सौम्या नीचे उतर गई, घर छोड़कर एक फ्लैट में रहने। मोह के धागे नाजुक सही, मोह के धागे नाजुक सही, पर टूटते नहीं, दिल से जुड़े रिश्ते यूं ही छूटते नहीं। कहानी खत्म हो जाए, कहानी खत्म हो जाए भले ही यहां, पर ये बंधन कभी खत्म होते नहीं। अंत में मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ इस सुंदर मंच का, जिसने मुझे अपनी भावनाएं आप तक पहुंचाने का अवसर दिया। आप सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत आभार, जिन्होंने मुझे सुना और अपना समय दिया। उम्मीद है मेरे शब्द आपके दिल को छू पाए होंगे। धन्यवाद।

अगर गुमनाम है कोई तो उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिसे आपका उसे पहचान मिल जाए, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा। आचार्य 90 FM को जब साथ आप जैसे ऑडियंस का मिल जाए। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे प्यारे ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। तुम कसो असा, हाउ आर यू ऑल। भाई गर्मी से तो सबका ही एकदम खराब हाल है। अब इस गर्मी की मार को थोड़ा सा कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ अच्छी बातें कर सकते हैं जिनमें अच्छी रेसिपीज और कुछ अपनापन भी हो। तो फिर चलिए ऐसी रेसिपी सुनाते हैं जो सुपर फूड होने के साथ साथ फेमस रेसिपी भी है। पहले आप मुझे बताइए कि भारत का राष्ट्रीय फूल जो पवित्रता, सौंदर्य, ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रतीक है, उसका नाम क्या है? ये कीचड़ भरे तालाबों में उगता है लेकिन फिर भी निर्मल होता है। ये स्टेडी वाटर मतलब रुका हुआ पानी तालाब और कीचड़ में उगता है। इस फूल की पंखुड़ियों पर पानी नहीं रुकता। ये जीवन की चुनौतियों के बीच भी पवित्र रहने का प्रतीक है। इसे डेकोरेशन, मेकअप और मेडिसिन्स में भी यूज करते हैं। वैसे माता लक्ष्मी इसे अपना आसन बनाती है। हमारी भारतीय संस्कृति में इसे पद्म के नाम से जाना जाता है। कुछ याद आ रहा है? कश्मीर में इस खूबसूरत फूल के तने से नदरू नाम की सब्जी बनती है। यस, सही गेस किया आपने। मैं बात कर रही थी कमल के फूल के बारे में, लेकिन हमारी आज की रेसिपी इस कमल के फूलों के बीज से बनने वाली है। आमतौर पर इसे मखाना या फॉक्स नट्स मींस कमल के बीज के नाम से जाना जाता है। ये एक सुपर फूड ही नहीं, एकदम फेमस सुपर फूड है। इसे मेनली बिहार के तालाबों और झीलों में उगने वाले कांटेदार पौधों से पाया जाता है। वैसे दुनिया का 85% मखाना तो हमारे बिहार में ही पाया जाता है। लो कैलोरी और हाई फाइबर वाला ये मखाना एंटी एजिंग होता है। इसे खाने से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। क्या आपने इसे घी रोस्ट करके कभी खाया है क्या? एकदम टेस्टी टेस्टी स्नैक आइटम है ये जनाब। तो चलिए आज हम एक फेमस मिठाई बनाते हैं जिसका नाम है मखाना खीर। आप इसे व्रत या किसी खास मौके पर 15 से 20 मिनटों में बना सकते हैं। वैसे कैल्शियम और प्रोटीन से भरी ये मखाना खीर आपको टेस्ट और हेल्थ दोनों ही देगी। हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए हम आज इसे बना रहे हैं। मखाना खीर बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स। मखाना 2 कप मींस अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 grams, फुल क्रीम मिल्क 1 लीटर, देसी घी 2 चम्मच, चीनी 1/2 कप या स्वादानुसार, इलायची पाउडर 2 चुटकी, चॉप ड्राई फ्रूट्स 2 बड़े चम्मच, मुनक्का 1 चम्मच, 2 चम्मच दूध में भिगोए हुए केसर के धागे 8 से 10, और ढेर सारा प्यार भी चाहिए क्योंकि आपके मन की भावनाएं इसमें उतरने वाली है। अब हम इसकी रेसिपी सुनते हैं। एक कढ़ाई में घी को गर्म कीजिए, फिर उस घी में धीमी आंच पर मखानों को भून लीजिए। थोड़ी देर मतलब 4-5 मिनटों में मखाने क्रिस्पी होंगे। उन गर्म मखानों को ठंडा करें और मिक्सर में पीस लीजिए। ध्यान रहे मखानों को पाउडर फॉर्म में नहीं लाना है। इसे जाड़ा जाड़ा मींस दरदरा पीस लीजिए। फिर एक मोटे बेस वाले बर्तन में दूध को उबालिए, फिर उसे कुछ टाइम के लिए लो फ्लेम पे पकाइए। लगभग 10 मिनटों के बाद वो दूध गाढ़ा बनने लगेगा। अब इस गाढ़े से दूध में सारे ड्राई फ्रूट्स और केसर वाला दूध ऐड कीजिए। इसे 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाइए। थोड़ी देर बाद मखाना खीर एकदम गाढ़ी और मलाईदार होगी। फिर इसमें शक्कर, इलायची पाउडर और ढेर सारा प्यार भी ऐड कीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर रेसिपी में आप ढेर सारा प्यार ऐड कीजिए। ऐसा मैं क्यों कहती हूँ? क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरेंगी और खाने वाला इसे महसूस करेगा। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप देती हूँ। अगर सारे ड्राई फ्रूट्स को घी में हल्का भूनकर आप इस खीर में डालेंगे तो मखाना खीर और ज्यादा टेस्टी बनेगी। फिर इस मखाना खीर को एक सुंदर से बर्तन में निकालिए, फिर भगवान को इस खीर का भोग लगाइए और लुत्फ उठाइए इस टेस्टी मखाना खीर का।
वैसे ये मखाना खीर अगर आप मिल बांट कर मींस शेयर करके खाएं तो इसका टेस्ट और ज्यादा निखर कर आता है। यकीन ना आए तो एक बार ट्राई जरूर कीजिए। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। वैसे इस मखाना खीर को आप ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। गर्मियों में गर्म खाने की बजाय ठंडा खाना अच्छा लगता है कि नहीं? वैसे आपको खीर के साथ क्या खाना अच्छा लगता है? मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं स्वाद का जायका ऑन आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। पेश है खीर की तारीफ में एक छोटी सी कविता। दूध कढ़ाई में जब खोले तब धीमी आंच पर मखाना डोले, मम्मी जब खीर बनाए इलायची की खुशबू छाए, मखाना दूध और शक्कर का मेल, टेस्टी ड्राई फ्रूट से सचता ये खेल, ठंडी ठंडी मीठी मीठी मन को ललचाए ये खीर रसीली। व्रत त्योहार या मेहमान आए हर मौके का स्वाद बढ़ाए, इसे खाकर खिला मन का कमल, मखाना खीर से माहौल गया बदल। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। वैसे हमारे भारत देश में खाना खिलाने के लिए हम बहाने ढूंढते ही रहते हैं, है कि नहीं? यहाँ तरह तरह के लोग और डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फूड हमेशा ही मिलता है। हमारे इस स्वाद का जायका शो पर हम आपको इनकी दोबारा से पहचान कराएंगे, बैक टू बेसिक्स, क्योंकि आप हमारे खास दोस्त हैं और दोस्ती पक्की करने के लिए खाना खिलाना एक अच्छा तरीका है। कहते हैं कि रिश्तों के नाम भी अजीब है, आप सिर्फ ऑडियंस ही नहीं अपनों जितने करीबी हैं। इस बात पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार हम और बातें करेंगे।

वेलकम बैक। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और हमारे इस शो का नाम है स्वाद का जायका। हमारी अगली रेसिपी है पान का मीठा शरबत। वैसे खाना खाने के बाद पान का बीड़ा खाना अच्छा होता है, पान का पत्ता खाना। वैसे इस पान के पत्ते पर सौंफ, गुलकंद, थोड़ी इलायची डालकर आप कभी खाकर देखिए जनाब, इतनी टेस्टी मिठाई खाने की फीलिंग आएगी कि पूछो मत। पान बीड़ा को एक माउथ फ्रेशनर के रूप में खाया जाता है। कहते हैं कि इस पान के पेड़ पर सांप होते हैं, इसलिए पान के पत्तों को खाने से पहले उसका आगे का और पीछे का हिस्सा तोड़ना जरूरी है, क्योंकि सुबह की ओस की बूंदे ड्यू ड्रॉप्स को ये सांप चाटते हैं, तो हो सकता है कि वो पत्ते हमारी सेहत पर बुरा असर डाले। तो इस रिस्क से निपटने के लिए हम पान का आगे का और पीछे का हिस्सा तोड़ते हैं। वैसे ये पान के पेड़ घनी छाया और ठंडक देते हैं। पान के पत्तों को हम पूजा में भी यूज करते हैं। तो आइए हम और आप दोनों मिलकर बनाते हैं पान का शरबत। पान का शरबत बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स। पान के पत्ते मींस बीटल लीफ 2, इसका आगे का और पीछे का थोड़ा सा हिस्सा आप तोड़ दीजिए। वजह तो मैंने बता दी है क्यों। गुलकंद 1 चम्मच, भिगोया हुआ गोंद कतीरा 1 चम्मच, गोंद कतीरा मतलब डिंक, सौंफ 1 चम्मच, भिगोया हुआ सब्जा 1 चम्मच। सौंफ को आप रात भर पानी में भिगो कर रखिए। इसे यूज करते समय इसका पानी हटा दीजिए। सेम विद सब्जा सीड्स, मतलब सब्जा सीड्स को भी रात भर भिगोइए, सुबह उसका एक्स्ट्रा पानी हटाकर सिर्फ फूले हुए सब्जा को आपको यूज करना है। इसके अलावा हमें चाहिए ठंडा दूध 1/2 कप, ठंडा पानी 1/2 कप। अब हम इस टेस्टी शरबत की रेसिपी सुनते हैं। मिक्सर के एक जार में पान के पत्ते, गुलकंद, सौंफ, ठंडा दूध, ठंडा पानी, इन सारी चीजों को अच्छे से घुमाइए। 2 मिनट के बाद लाइट ग्रीन कलर का मस्त शरबत तैयार होगा। फिर इस शरबत को एक सुंदर से सर्विंग ग्लास में निकालिए। उसमें भिगोया हुआ गोंद कतीरा मींस डिंक और सब्जा डालकर चम्मच से मिक्स कीजिए। अब अपने मुखड़े पर एक प्यारी सी स्माइल लाइए। पान के शरबत की छवि को अपने मोबाइल कैमरा में बंद कीजिए, फिर इसका लुफ्त उठाइए। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM। वैसे ये पान का शरबत आपका शरीर और दिमाग इन दोनों को ठंडक का एहसास दिलाएगा, और ये सब करना गर्मी में बेहद जरूरी है। इस पान शरबत की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है हरियाली शरबत। पान का शरबत देखकर याद आई हरियाली, पान का शरबत देखकर याद आई हरियाली, जैसे बागों की छांव में नाचे नार मतवाली। गर्मी के सीजन में खुद से ही हो रहा युद्ध, तो पियो ग्लास फुल खान पान वाला दूध। इसे पीकर तुम हो जाओ कूल, टेस्ट है इतना प्यारा कि गर्मी को जाओगे भूल। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आपसे बात कर रही हूँ इस शो पर जिसका नाम है स्वाद का जायका। वैसे स्वाद और जायका ये दोनों एक दूसरे के साथी हैं। दे आर फ्रेंड्स। इन दो शब्दों में छोटा सा फर्क है, और वो फर्क ये है कि स्वाद को हम अपनी टंग से मींस अपनी जीभ से टेस्ट करते हैं, जैसे खट्टा, मीठा या नमकीन स्वाद, और जायका हमें उस स्वाद का अरोमा मींस महक यानी खुशबू और टेम्परेचर बताता है। फॉर एग्जाम्पल, शक्कर का स्वाद मीठा होता है, राइट? लेकिन बर्फी का जायका उसमें इस्तेमाल की हुई केसर, इलायची और जायफल जैसी चीजों से पता चलता है। इन शॉर्ट, स्वाद एक घटक है, जबकि जायका एक कंप्लीट खाने का एक्सपीरियंस है ना इंटरेस्टिंग बात। वैसे ये जो शेफ होते हैं, उनके हाथों से बना खाना मतलब एक जादू सा लगता है कि नहीं? और उसके आगे घर के खाने को हम ध्यान नहीं दे पाते। वैसे शेफ बनना कोई आसान बात तो है नहीं जनाब। स्वाद के बादशाह, रसोई के सरताज, हर निवाले में जादू, हर रिश्ते में ताज, उलझने दिल को सुलझाएं स्वाद के नए रस से। रसोई का कलाकार अपनी कला में प्रवीण, दिल का रिश्ता बनाता है खास अपने हुनर से। इनके हाथों का खाना खाकर
दिल को मिले सुकून, अदब से पूछे हाल हमारा और खाना बनाए जो हुकुम। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM। वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछूं? क्या आपके हाथों का जायका आपकी स्माइल से भी अच्छा है क्या? क्या बात! वैसे आपके हाथों का खाना ना सही, लेकिन आपके चेहरे की स्माइल ही मेरे लिए काफी है। कहते हैं कि इफ कुकिंग इज एन आर्ट, तो हर डिश के पीछे एक आर्टिस्ट होता है और हर घर में एक फूड आर्टिस्ट तो होता ही है। बच्चों के टिफिन को रेडी करना, सबका नाश्ता बनाना, दोपहर का खाना, रात का खाना, त्योहार स्पेशल खाना, उपवास स्पेशल खाना, बीमार फैमिली मेंबर के लिए अलग सा डाइट फूड, ऐसी अनगिनत टाइप का खाना बनाना कितना मुश्किल है। मुझे तो ये लिस्ट सुनकर अभी से टेंशन हो रही है। इसलिए तो हम खाना खिलाने वाले उस व्यक्ति को अपना ग्रेटिट्यूड वाला एटीट्यूड दिखा ही सकते हैं। वैसे आप हर रोज किसके हाथों से बना खाना खाते हैं? मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM। कहते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद सो जाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, तो भाई खाना खाने के बाद करें तो क्या करें? आप चाहे तो खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ सकते हैं, या फिर धीरे धीरे टहल सकते हैं, थोड़ा यहाँ वहाँ घूमिए फिरिए, कुछ नहीं तो अपने घर में ही 10-12 राउंड लगाइए, फिर देखिए कितना अच्छा फील होता है। आज हम बात करेंगे भारत के फेमस सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर की। शेफ संजीव कपूर का फेमस डायलॉग है, नमक स्वाद अनुसार। इन्होंने भारतीय खाने को इंटरनेशनल पहचान दी है। खान पान क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए शेफ संजीव कपूर को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। एशिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला कुकरी शो, जिसका नाम था खाना खजाना, इस शो के माध्यम से शेफ संजीव कपूर घर घर में फेमस हुए। इंडियन डेलिकेसीज, उसमें स्पेशली पंजाबी स्टाइल खाने को वो एकदम आसान मेथड से बनाना सिखाते थे। उन्होंने कुकिंग से रिलेटेड किताबें भी लिखी है। उनकी फेमस डिश का नाम है शाम सवेरा डिश। इस रेसिपी को बनाते समय पालक के कोफ्ते के अंदर पनीर भरा होता है और इस पालक पनीर कोफ्ते को टमाटर और काजू की रिच ग्रेवी में परोसा जाता है। वाओ! वैसे नवंबर 2017 में न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड फूड इंडिया इस शो में शेफ संजीव कपूर ने लगभग 1000 किलो के करीब वजन की खिचड़ी पकाकर अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। इस खिचड़ी को पकाने के लिए उनके साथ 50 शेफ की एक टीम भी थी। इंडिया गेट न्यू दिल्ली एरिया में ये अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। हमें नाज है ऐसे खान सामे पर, जिसने अपने हाथों के जादू से कुकिंग को एक विशेष पहचान दी है। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड।

कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय, कहाँ जान फंसाई मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय, कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, हाँ अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया।

टू आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और हमारे इस शो का नाम है स्वाद का जायका। वैसे गर्मियाँ तो बढ़ती ही जा रही है, रुकने का तो नाम ही नहीं, और ऐसे में अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात ये है कि आप पानी पीते रहिए। प्यास लगेगी तब पानी पिया जाएगा, ऐसे मत सोचिए। हर एक दो घंटे बाद पानी पीते रहना अच्छी आदत है। वैसे घर का बना ताजा खाना हमें थ्रू आउट द ईयर खाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन इस गर्मी वाले सीजन में होममेड ताजा खाना हमारी हेल्थ के लिए बेस्ट ऑप्शन है। गर्मियों में डीप फ्राइड, स्पाइसी और फास्ट फूड से आप जरा दूर ही रहिए। चाय, कॉफी और बहुत ज्यादा मीठी चीजों से आप बचे। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस, बाप रे बाप, फिर क्या खाना चाहिए? आप ककड़ी और दही का रायता खाइए। वाटरमेलन, मस्कमेलन का सेवन हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। मैंगोस को एक घंटे के लिए ठंडे पानी में डुबाकर रखिए। ऐसा करने से उसकी हीट थोड़ी कम होगी, फिर आप उसे भी खा सकते हैं। नींबू पानी, गन्ने का रस और कोकम शरबत पीने से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। रूम टेम्परेचर वाली लस्सी या फिर छाछ हमारे पेट को शांत रखती है। आम पना मीन्स कैरी का शरबत हमें हीट स्ट्रोक से बचाता है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। वैसे समर सीजन में कुछ लोग आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, राइट? भाई ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाना किसे पसंद नहीं है? बूढ़ों से लेकर बच्चों तक सभी आइसक्रीम प्रेमी होते हैं। लेकिन क्या आइसक्रीम सचमुच हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाती है? क्या आप जानते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में जब विंटर सीजन होता है तब वहाँ के लोग क्या खाना पसंद करते हैं? जब बर्फ गिर रही हो और उन्हें अपनी बॉडी को गर्म रखना हो तब वो लोग खाते हैं आइसक्रीम। जी हाँ, ठीक सुना आपने। फॉरेन कंट्रीज में जब हैवी स्नोफॉल होता है तब वहाँ के लोग आइसक्रीम खाने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं, क्योंकि आइसक्रीम की तासीर गर्म होती है। आइसक्रीम जब हमारे शरीर के अंदर जाती है तब उसे पचाने के लिए बहुत सारी एनर्जी खर्च होती है और इस प्रोसीजर में हीट जनरेट होती है। इसीलिए तो आइसक्रीम खाने के थोड़ी देर बाद हमें जोरदार प्यास लगती है। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी? आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। बाय द वे, व्हाट इज योर हेल्थ मंत्रा टू बीट द हीट? वैसे फ्रिज का ठंडा खाना हमारी सेहत पर कुछ अच्छा असर नहीं करता। इट इज क्वाइट अनहेल्दी ऑप्शन। फ्रिज के खाने को आप रूम टेम्परेचर पर लाकर खाएं तो थोड़ा ठीक है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि गर्मी के सीजन में दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है, क्योंकि सनराइज जल्दी होता है और सनसेट थोड़ी देर से होता है। तो क्यों ना हम भी सुबह जल्दी उठकर अच्छा सा और हेल्दी सा जायकेदार नाश्ता करें। अगर दिन की शुरुआत ही अच्छी हो तो दिन भर एनर्जी महसूस होती है। Am I right? वैसे इस साल 21 जून 2016 को ग्रीष्म संक्रांति है, वर्ष का सबसे लंबा दिन और छोटी रात। तो आप इस खास दिन को क्या खाकर सेलिब्रेट करना पसंद करेंगे? मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और हमारे इस शो का नाम है स्वाद का जायका। क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में जून के महीने में मैंगो फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है? जी हाँ, मैं आम्र महोत्सव की बात कर रही हूँ। इस फेस्टिवल में आप जरूर जाइए। फलों के राजा की विविधता का जश्न आप दिल खोल कर मनाइए। इस आम्र महोत्सव में 100 से ज्यादा वैरायटीज के मैंगोज का एग्जीबिशन होता ही है। साथ ही आम से बने अनेक व्यंजनों का लुत्फ आप आराम से उठा सकते हैं। मोस्टली दिल्ली, लखनऊ, पटना और रायपुर में मैंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अल्फोंसो, दशहरी, लंगड़ा, चौसा जैसी फेमस वैरायटीज के अलावा कुछ रेयर वैरायटीज को भी मैंगो फेस्टिवल में एग्जिबिट किया जाता है। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। वैसे हमारे देश में मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन मीन्स आम खाने की प्रतियोगिता भी काफी फेमस है। वैसे बिहार के मधुबनी में आयोजित मैंगो फेस्टिवल में मुकुल मिश्रा नाम के व्यक्ति ने 5 मिनट में 32 आम खाकर रिकॉर्ड क्रिएट किया था। मिथिला मैंगो फेस्टिवल में एक हाथ से आम खाने का वीडियो काफी वायरल हुआ था। वैसे गर्मी के सीजन में आप एक या दो आम हर रोज खा ही सकते हैं।
विटामिन सी से भरा ये आम फल हमारी स्किन और इम्यूनिटी के लिए बेनिफिशियल है। वैसे 24 घंटे सिर्फ आम खाने का एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, लेकिन एक प्रिकॉशन आप जरूर लीजिए। आम को कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए, अदरवाइज आपकी हेल्थ पे बुरा असर पड़ सकता है। आम का मुरब्बा, आम का अचार, आम पापड़ या कुछ और, आपको आम से बनी कौन सी रेसिपी खास लगती है? मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। इस आम की खिदमत में पेश है एक कविता। कविता का नाम है आम। मुझे बहुत भाते हैं नानी मीठे मीठे आम, भर डालिया तो मुझे भी खिला दे, लूंगा तेरा नाम। बहुत बड़ी है बगिया तेरी, छोटा मेरा पेट, और पेट से भी छोटा है मेरे मुंह का गेट। घबरा मत, खा पाऊ में बगिया भर के आम, न दे टॉफी न दे बिस्किट, दे बस केवल आम। आम खिलाकर करवा ले तू मुझसे सारे काम, सिर्फ एक दिन कर दे इस बगिया मेरे नाम। इस प्यारी सी कविता के कवि है श्री शिवचरण चौधरी जी। भाई, हमारे खास ऑडियंस से आज हमने आम बातें तो कर ली। आपको हमारा आज का शो कैसे लगा ये हमें जरूर बताइए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज हो तो हमें जरूर बताइए। और अगर आप अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो वो भी बताइए। हमारे देश की और विदेशों की रेसिपीज को सुनने के लिए, उनसे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातों को एंजॉय करने के लिए स्वाद का जायका जरूर सुनिए। एवरी मंडे एट 1 PM एंड एवरी फ्राइडे एट 4 PM हमने आपके साथ अपॉइंटमेंट रखी है। आप इस शो में शामिल होकर स्वाद का जायका सुनिए और कुछ मनपसंद गीत भी गुनगुनाइए। अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का, वापस मिलने का ये मेरा वादा। सिर्फ वादा नहीं बल्कि पक्का वादा, हम आपसे दोबारा मिलने जरूर आएंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

0: आप शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए, मैं अब और इंतजार नहीं करना चाहती।
1: लेकिन अंजलि, बाबा जी ने तो कहा था दिसंबर के पहले कोई तारीख नहीं है।
0: माँ, खुशियां तारीख नहीं, तकदीर लाती है, जिसे कोई नहीं बदल सकता।

हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका आचार्य 90 FM में। आप सुन रहे हैं कहानियों की गुल्लक, एक ऐसी गुल्लक जिसमें हम लेके आते हैं नई नई कहानियाँ और उस गुल्लक को भरते हैं कहानियों से। जैसे कि पिछली बार आपने सुना था अमन और विक्रम किस तरीके से जेल में है, एक दोस्त है पुलिस अफसर और दूसरा दोस्त है एक कैदी। कैदी के दिल में ये डर है कि कहीं उसे अब अंग्रेजी हुकूमत खत्म ना कर दे, और वहीं दोस्त जो पुलिस अफसर है उसके दिलो दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है कि वो अपने दोस्त को भी बचा ले और वहां से क्रांतिकारियों की फाइल भी चुरा ले। तो देखते हैं कहानी का अगला हिस्सा। 1931 की सर्द रात, जेल के अंदर हवा भी अजीब सी लगी थी, दीवारें मोटी थी, लोहे के दरवाजे भारी आवाज के साथ बंद होते थे और हर कोने में एक अजीब सा सन्नाटा बसा हुआ था। इसी जेल के अंदर कमरे में बैठा था विक्रम सिंह, उसके हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे, चेहरे पर थकान थी, कपड़ों पर खून के छोटे छोटे दाग थे। अंग्रेज सिपाहियों ने उसे पकड़ने के बाद से ही पूछताछ शुरू कर दी थी। आजाद सेना मंडल के लीडर कौन है, फाइल्स कहां छुपा रखी है, कौन कौन शामिल है तुम्हारे ग्रुप में, न जाने ऐसे कितने अनगिनत सवाल अंग्रेजी हुकूमत पूछने लगी। अंग्रेजी सिपाही मारने लगे पर विक्रम तस का मस नहीं हुआ। विक्रम के दिल में, विक्रम के दिमाग में, उसके पूरे बदन में, उसके पूरे शरीर में, उसके बदन के खून में, हर दौड़ती हुए खून में, हर नसों में, रग रग में बस एक ही चीज थी, आजादी, आजादी, आजादी। इसीलिए इतनी मार, इतनी चोटें, इतनी वेदनाएं सहने के बाद भी विक्रम ने जवाब नहीं दिया, बस चुप रहा। कभी कभी वो मुस्कुराता भी था और उस मुस्कुराहट से अंग्रेज और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते थे। एक सिपाही ने उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा, बोल वरना जिंदा नहीं बचेगा। विक्रम धीरे से बोला, आजादी के लिए मरना कोई सजा नहीं होती। सिपाही गुस्से से लाल हो गया, उसने डंडा उठाया और फिर से विक्रम पर बरसा दिया। कमरे में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, डंडे की। कैप्टन हॉकिंस का सवाल, अगली सुबह में जेल में एक गाड़ी रुकी, उस गाड़ी से उतरकर सीधा जेल के अंदर आया एक आदमी, लंबा कद, सफेद यूनिफॉर्म और आंखों में वही ठंडी सख्ती, कैप्टन एडवर्ड हॉकिंस, जेल सुपरिटेंडेंट उसके सामने सीधा खड़ा हो गया। सर, ये वही लड़का है, क्रांतिकारी। हॉकिंस धीरे से विक्रम के पास आया, उसने उसका चेहरा पकड़ा और ऊपर उठाया। तुम जैसे जवान अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हो, हॉकिंस ने उससे कहा। विक्रम ने थूक दिया जमीन पर। जिंदगी बर्बाद नहीं, कुर्बान करते, विक्रम ने बड़े फक्र से कहा। हॉकिंस थोड़ा हंस पड़ा। तुम लोगों को लगता है तुम अंग्रेजी हुकूमत गिरा दोगे? विक्रम ने सीधा जवाब दिया, एक दिन जरूर। हॉकिंस कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसने गार्ड को इशारा किया, इसे तोड़ दो, कल तक बोलना शुरू कर देगा। उसी वक्त जेल के कॉरिडोर में एक और ऑफिसर खड़ा था, यूनिफॉर्म पहने हुए, टोपी आंखों पर थोड़ी झुकी हुई, सब इंस्पेक्टर अमन खान। वो सब कुछ देख रहा था मगर उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक सिपाही ने पूछा, सर आप अंदर आना चाहेंगे? अमन ने बस इतना कहा, ड्यूटी कंप्लीट होने लगी।
मगर जब हॉकिंस वहां से चला गया तब अमन धीरे से सेल के पास आया। गार्ड कुछ दूर खड़ा था। अमन ने धीरे से कहा, विक्रम। विक्रम ने सर उठाया। उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी थी, फिर वो थोड़ा हंस पड़ा। तो सच है? अमन चुप रहा। तुम उनके आदमी बन गए? अमन धीरे से बोला, ये सब नाटक है। विक्रम ने सर हिला दिया। नाटक? नाटक भी कभी कभी सच बन जाता है अमन। विक्रम, अमन की आंखों में पहली बार दर्द दिखा। मैं तुम्हें यहां से निकालूंगा। विक्रम थोड़ा हंसकर कहने लगा, अभी भी प्लान बना रहे हो? अमन ने कहा, मैं फाइल्स के करीब हूं, हॉकिंस के। विक्रम ने उसकी तरफ देखा, अगर तुम सच में उनके साथ हो तो आज ही मुझे गोली मार दो। अमन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, विक्रम, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। क्या तुम्हें मेरे अंदर अब तुम्हारा बचपन का दोस्त नजर नहीं आता? वो दोस्त जिसने तुम्हारे साथ मिलकर आजादी की कसमें खाई थी, वो दोस्त जिसने तुम्हारे साथ मिलकर आजादी का सपना देखा था, वो दोस्त जिनकी लोग मिसाल देते थे, वो दोस्त जिसके लिए तुम ही सब कुछ हो। अमन के इतना सब कुछ कहने के बावजूद विक्रम की आंखों में शक बस चुका था। विक्रम को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वो अमन पर भरोसा करे या ना करे।

उसके दिल में एक अलग सी कश्मकश चल रही थी। उसे ऐसे लग रहा था कि शायद अमन ही उसे गोली मार दे या अमन ही उसे खत्म कर दे। उसे ये भी लग रहा था कि अमन वो फाइल्स जल्द से जल्द ढूंढ निकालेगा या अमन उनके सीक्रेट मिशंस को लेकर क्रांतिकारियों के छुपने के ठिकानों से लेकर क्रांतिकारियों के नाम, उनका घर, वो सब कुछ जानकारी अंग्रेजी हुकूमत को दे देगा। दोनों के दिल में न जाने कितने अनगिनत सवाल थे और दोनों के पास उन दोनों सवाल के कोई जवाब नहीं। बस अमन ये सोच रहा था कि कैसे वो विक्रम को बचा ले और फाइल्स को वहां से चुरा ले। वही दूसरी ओर विक्रम के दिल में भी रुक रुक कर बस एक ही आस उठ रही थी और वो ये थी कि अमन गद्दार ना निकले, बस अमन जैसे पहले था, क्रांतिकारी, आजादी के लिए लड़ने वाला, वो आखिर में भी बस ऐसे ही निकला एक क्रांति की तरह, एक क्रांतिकारी की तरह। तो कहानी का अगला भाग सुनेंगे हम अगले हिस्से में, तब तक आप सुनते रहिए आचार्य 90 FM।

स्वागत है दोस्तों आप सभी का ब्रेक के बाद। आप सुनते हैं कहानी का आखिरी हिस्सा और इस हिस्से में हम बात करेंगे कि कैसे विक्रम जेल में है और कैसे अमन फाइल्स को चुरा लेता है या नहीं लेता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। अभी उस रात लखनऊ ब्रिटिश ऑफिस में एक मीटिंग हुई। हॉकिंस टेबल के हेड पर बैठा था। उसने एक फाइल टेबल पर पटकी। क्रांतिकारी बढ़ रहे हैं, अब वक्त आ गया है सख्ती का, हॉकिंस ने कहा। एक ऑफिसर ने पूछा, सर क्या ऑर्डर है? हॉकिंस ने तेज आवाज में कहा, सिक्योरिटी सप्रेशन पॉलिसी, जो भी क्रांतिकारी पकड़ा जाए उसे सीधे मार दो। रूम में कुछ पल की खामोशी छा गई। अमन भी उसी मीटिंग का हिस्सा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीमी आवाज में पूछा, सर ट्रायल? हॉकिंस हंस पड़ा। जस्टिस इज अ लग्जरी इन वॉर। कल सुबह उस लड़के विक्रम सिंह को एग्जाम्पल बना देते हैं, हॉकिंस ने कहा। अमन काफी शांत हो गया इसमें। रात के अंधेरे में अमन जेल के अंदर गया। गार्ड को उसने कहा, कैप्टन का ऑर्डर है प्रिजनर्स को शिफ्ट करना। गार्ड ने दरवाजा खोला। सेल के अंदर विक्रम बैठा था। अमन उसके पास आया। आज रात भागना होगा, अमन ने कहा। विक्रम ने उसकी तरफ देखा, तुम्हें लगता है मैं तुम पे भरोसा करूंगा?

कुछ कर चुका है। फिर उसने धीरे से कहा, तो मरने दो। अमन की आवाज, पागल हो क्या? विक्रम ने सीधा जवाब दिया, अगर मैं तुम्हारे साथ भाग गया तो लोग कहेंगे विक्रम सिंह डर गया, मगर अगर मर गया तो लोग कहेंगे एक और क्रांतिकारी शहीद हो गया। अमन कुछ बोल नहीं पाया। उस रात दोनों दोस्त चुप बैठे रहे, जैसे बचपन के वो दिन याद कर रहे हैं। वही बरगद का पेड़, गांव की गलियां और आजादी के सपने, यही सारी बातें सोचते हुए, इनके सपने देखते हुए सुबह का सूरज निकल आया। अगली सुबह जेल के कोर्टयार्ड में लाइन लग गई। ब्रिटिश सोल्जर्स खड़े थे, बीच में खड़ा था विक्रम सिंह। उसके हाथ अब बंधे नहीं थे, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति। हॉकिंस सामने खड़ा था, उसने पूछा, लास्ट वर्ड्स? विक्रम ने आसमान की तरफ देखा, फिर जोर से चिल्लाया, आजादी। फिर उसकी नजर अमन पर पड़ी। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिली। विक्रम ने बस इतना कहा, अपना ध्यान रखना दोस्त। अमन की उंगलियां कांप रही थी, मगर वो कुछ नहीं कर पाया। हॉकिंस ने हाथ उठाया, फायर! गोलियों की आवाज कोर्टयार्ड में गूंजने लगी और उस पल एक दोस्त

चलाने के बाद सब लोग वहां से चले गए। कोर्टयार्ड खाली हो गया, बस एक आदमी वहां खड़ा था, अमन खान। वो धीरे से विक्रम के पास आया, जमीन पर बैठा। उसने उसके खून से भीगे हाथ को पकड़ा और धीरे से कहा, तुमने कहा था ना बदला नहीं आजादी। अमन की आंखों में आंसू थे, मगर उसकी आवाज अब बिल्कुल ठंडी हो

आजादी। और उस पल ब्रिटिश यूनिफॉर्म पहना हुआ एक आदमी अंदर ही अंदर क्रांति बन चुका था। एक ऐसी क्रांति जो पूरी ब्रिटिश आर्मी को चलाने वाली थी, ब्रिटिश सोल्जर्स को चलाने वाली थी, पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चलाने वाली थी। कुछ दिन बीत गए, महीने बीत गए, एक साल बीत गए और अब लोग एक नाम लेने लगे थे, सब इंस्पेक्टर अमन खान। ब्रिटिश ऑफिसर्स उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत इफिशियंट था, क्रांतिकारियों को पकड़ने में सबसे आगे। कई सीक्रेट हाइडआउट्स उसने रेड करवाए, कई लोगों को जेल भेजा। ब्रिटिश ऑफिसर्स कहते थे ये आदमी लॉयल है, मगर सच कुछ और था। एक दिन रात के अंधेरे में अमन एक पुरानी हवेली में गया। अंदर कुछ लोग बैठे थे, आजाद सेना मंडल के बचे हुए मेंबर्स। उनका लीडर अब एक नया आदमी था, इकबाल हुसैन। इकबाल ने अमन को देखा, उसकी आंखों में शक था। हम तुम पर भरोसा क्यों करें, इकबाल ने कहा। अमन ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि विक्रम सिंह मेरा दोस्त था। रूम में खामोशी छा गई। अमन ने टेबल पर एक फाइल रखी, ये हॉकिंस की सिक्योरिटी डिटेल्स है। सब लोग हैरान हो गए, तुम ये सब कैसे ले आए? अमन ने बस इतना कहा, मैं उस आदमी को मारना चाहता हूं। फाइल में सब कुछ था, हॉकिंस का रूटीन, गार्ड शिफ्ट टाइमिंग्स और एक इम्पोर्टेंट बात, हर फ्राइडे रात वो लखनऊ रेसिडेंसी क्लब जाता है, शराब पी, पार्टी कर। अमन ने मैप खोला, यही मौका है और इसी जगह हमें उसे मारना होगा। इकबाल ने पूछा, तुम गोली चलाओगे? अमन ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं उसे खुद खत्म करूंगा। अगली शाम हॉकिंस और अमन एक जीप में जा रहे हैं। हॉकिंस ने सिगरेट जलाई और कहा, तुम बहुत काम के ऑफिसर हो अमन। अमन चुप रहा। हॉकिंस ने हंसकर कहा, तुम जैसे लोग ही ब्रिटिश राज को स्ट्रांग बनाते हैं। अमन ने धीरे से पूछा, सर आपको कभी लगता है कि लोग आज़ादी चाहते हैं? हॉकिंस हंस पड़ा, पीपल ऑलवेज वॉन्ट समथिंग, मगर पावर उनके पास होती है जो रूल करते हैं। अमन ने उसकी तरफ देखा और उस पल उसे विक्रम का खून याद आ गया। फ्राइडे रात रेसिडेंसी क्लब रोशनी से जगमग कर रहा था। अंग्रेज ऑफिसर्स म्यूजिक और शराब में डूबे हुए थे। हॉकिंस एक कॉर्नर टेबल पर बैठा हुआ था, अमन उसके पास खड़ा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, मगर बाहर अंधेरे में आजाद सेना मंडल के लोग तैयार थे। प्लान सिंपल था, 10:30 बजे लाइट चली जाएगी और उस पर कैप्टन हॉकिंस मरेगा। मगर अमन के दिमाग में एक और प्लान चल रहा था, एक ऐसा प्लान जिसे सिर्फ हॉकिंस नहीं पूरी ब्रिटिश पॉलिसी को एक मैसेज मिलने वाला था। और उस रात लखनऊ के क्लब में अंधेरे में एक गोली चलने वाली थी, जो सिर्फ एक आदमी को नहीं एक दोस्ती का बदला भी पूरा करने वाली थी। एक आदमी की नहीं बल्कि एक दोस्ती की, एक आज़ादी की मिसाल बनाने वाली थी। तो ठीक 10:30 बजे लाइट चली गई, अमन ने अपनी पिस्तौल निकाली। वो पिस्तौल उसने हॉकिंस के सर पर रखी और एक के बाद एक ऐसी 3 गोलियां उसके सर में डाली और वहां से आजादी आजादी आजादी चिल्लाते अमन बाहर भाग आया।
इस तरह एक दोस्त ने अपने दोस्त का बदला पूरा किया। जो लोग अमन को गद्दार समझते थे, उसने वो अपने गद्दारी का कलंक मिटाया, जो कि वो कभी गद्दार नहीं था, पर उसकी मंशा साफ थी कि वो छुपके से ही, एक सीक्रेटिव तरीके से ही क्रांतिकारी बन के रहेगा। मगर अब वो एक खुला क्रांतिकारी था। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, दो दोस्त और एक बदला, ये कहानी सुनने के लिए। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी सारी कहानी अच्छी लगती होगी। तो सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अगली बार फिर से लौटूंगा एक अलग कहानी लेकर, जिसमें होंगे बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी बातें और कुछ छोटी मोटी नोकझोंक। तब तक के लिए बाय बाय।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शब्बीर शेख लेके आया हूँ कहानियों के गुल्लक में एक और कहानी। कहानी का नाम है एक हफ्ते की जिंदगी। कुछ कहानियाँ हमें जिंदगी का ऐसा सबक दे देती है जो शायद हमने कभी सोचा ही ना हो। हम जिंदगी में इतनी बड़ी परेशानियों में होते हैं कि हम कभी सोच भी नहीं पाते कि उन परेशानियों का हल एक छोटी सी चीज में छुपा हो। तो ये कहानी भी एक ऐसी है कि इतनी बड़ी परेशानियां कैसे हल हो जाती है। तो चलो देखते हैं। सुबह का वक्त था, पहाड़ों के बीच एक पुराना सा आश्रम था। ना कोई शोर, ना शहर की भागदौड़, बस हवा की हल्की सी सरसराहट और पेड़ों पर बैठे पंछियों की आवाज। आश्रम के बाहर एक छोटा सा पत्थर का बोर्ड लगा था जिसमें बस दो शब्द लिखे थे, शांति धाम। यहां रोज लोग आते थे, कोई दुख लेकर, कोई सवाल लेकर, कोई बस सुकून की तलाश में। और आश्रम के बीच एक छोटे से चबूतरे पर बैठे थे संत आनंद गिरी महाराज। उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। बाल सफेद थे लेकिन चेहरे पर एक अजब सा तेज था, एक अजीब सी रोशनी जिसे सिर्फ कोई महापुरुष या कोई ऐसे संत महात्मा में देखा जाता है जो सिद्धि प्राप्ति कर चुका हो। आंखों में इतनी शांति थी कि जो भी उन्हें देखता उसका मन कुछ देर के लिए शांत हो जाता। लोग कहते थे ये संत सिर्फ बात नहीं करते, दिल पढ़ लेते। उस दिन भी सुबह का वक्त था, संत आनंदगिरी महाराज चबूतरे पर आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हुए थे। तभी आश्रम के गेट पर एक काली लग्जरी कार रुकी। ड्राइवर जल्दी से उतरा, दरवाजा खोला। कार से एक आदमी बाहर आता, महंगे कपड़े, ब्रांडेड वॉच, पॉलिश शूज, लेकिन चेहरे पर सुकून नहीं। उसका नाम था राघव मेहता, शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, होटल्स, मॉल्स। उसके पास इतनी प्रॉपर्टी थी कि लोग उसका नाम इज्जत से लेते थे। लेकिन अगर कोई उसके करीब जाता तो उसे समझ जाता कि वो अंदर से कितना टूट चुका है। राघव धीरे धीरे चलते हुए आश्रम के अंदर आया। उसने आसपास देखा, कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे। कुछ लोग शांत से दर्शन ले रहे थे और कुछ दर्शन लेने के लिए लाइन में खड़े थे। लेकिन राघव को किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था। वो सीधा चबूतरे की तरफ बढ़ गया। संत आनंदगिरी महाराज ने आंखें खोली, उन्होंने राघव को देखा और बस एक पल में ऐसा कुछ हो गया कि राघव आनंदगिरी महाराज के इशारों पर नाचने लगा। जो अपने पैसों के घमंड से, अपनी ईगो से भरा पड़ा आदमी, उसे आनंदगिरी महाराज ने कहा इधर आओ बेटा। राघव बिना कुछ बोले चुपचाप चबूतरे के पास बैठ गया। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर आनंदगिरी महाराज ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारी आंखों में बहुत सारे सवाल हैं, पूछो। राघव ने हल्की सी और थकी हुई स्माइल देकर कहा, बाबा सवाल है, बोझ। महाराज ने ध्यान से उसकी तरफ देखा और कहा, बताओ क्या बोझ है। राघव ने गहरी सांस ली, बाबा मेरे पास सब कुछ है, पैसा, नाम, इज्जत, पावर, लोग मुझे सक्सेसफुल कहते हैं। वो रुक गया, फिर धीरे से बोला, लेकिन मुझे लगता है मैं अंदर से खाली हूं। आनंदगिरी महाराज चुप रहे। राघव बोलता गया, रात को नींद नहीं आती, हर वक्त डर लगा रहता है, कहीं कोई मुझे धोखा ना दे दे, कहीं कोई मेरी प्रॉपर्टी ना छीन ले, भाइयों से कोर्ट केस चल रहा है, बहन से बात बंद है, दोस्तों से झगड़ा हो चुका है। उसकी आवाज थोड़ी भर गई, बाबा मेरे पास इतना पैसा है फिर भी मैं खुश क्यों नहीं। महाराज ने कुछ पल तक उसको देखा, फिर पूछा, सच सुनना चाहते हो बेटा।
राघव ने तुरंत सर हिलाया, हाँ हाँ बाबा मैं सच सुनना चाहता हूँ। आनंद गिरी महाराज ने कहा, बेटा सच बहुत कड़वा होता है, शायद इस सच को तुम पचा भी ना पाओ, और शायद ये सच सुनकर तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसकना चाहिए। पर राघव परेशान था, उसके पास कोई और उपाय नहीं था, उसके पास कोई दूसरा सलूशन नहीं था। वो बस इतना चाहता था कि जैसे तैसे उसके बस सवालों का उसे जवाब मिल जाए, उसके प्रॉब्लम्स का उसे सलूशन मिल जाए। राघव ने जब उनसे कहा कि तुरंत जी बाबा मुझे जवाब बता दीजिए, मैं क्यों परेशान हूँ, मुझे सच बता दीजिए, तो महाराज ने कहा कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। राघव का दिल एक पल के लिए रुक सा गया, मतलब महाराज ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता बचा हुआ है। राघव के पैर के नीचे की जमीन की सकी एक पल में उसे उसके वो बचपन से लेके अब तक के वो सारे दिन एक पल में उसे नजर आ गए। एक हफ्ता, राघव ने कहा, बाबा क्या मैं मरने वाला हूं? बाबा ने कहा, हाँ बेटा, इस एक हफ्ते के अंदर तुम्हारे जितने बचे हुए काम हैं उन कामों को पूरा कर लो, और ये एक हफ्ता तुम ऐसे जियो जैसे कोई नया बालक जब जन्म लेता है तब उसे ना दुनिया ना किसी चीज की पड़ी होती है, वो बस पवित्र होता है, वो बस देना जानता है, वो बस शांत रहना जानता है, वो बस खेलना जानता है, वो बस बस कोमल होता है, बस सच्चा होता है। और तुम ये अपनी जिंदगी का ये एक हफ्ता बस अपने आप से अपने प्रति सच्चे रहो।

0: वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शफीर। हम सुन रहे थे एक कहानी जिसका नाम था एक हफ्ते की जिंदगी, जिसमें आपने अभी सुना कि किस तरीके से आनंदगिरी महाराज ने राघव से कहा कि उसके पास सिर्फ एक हफ्ते की जिंदगी बची हुई है और वो एक हफ्ते अपनी जिंदगी के ऐसे जिए कि वो बहुत सच्चा हो, अपने आप से सच्चा रहे, सच बातें करे, सच चीज करे और जितना हो सके बस सच में रहे और अपनी इस बची कुची जिंदगी को बस वो सच के सहारे जिए। तो देखिए, सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। राघव का बंगलो शहर के सबसे महंगे एरिया में था। ह्यूज ग्लास वॉल्स, इटालियन मार्बल फ्लोर्स, स्विमिंग पूल, सर्वेंट, सिक्योरिटी, सब कुछ था। लेकिन उस रात उसे सब कुछ अजीब लग रहा था। वो अपने बेडरूम में अकेला बैठा था, डिम लाइट जल रही थी और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता। उसने अपने आप से पूछा, अगर सच में मेरी जिंदगी बस एक हफ्ते की है तो मैं ये एक हफ्ते में क्या करूंगा, उसने सोचा। और अचानक से उसके दिमाग में एक चेहरा आया। वो चेहरा था उसके बड़े भाई। सालों से दोनों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा था। कोर्ट में केस चल रहे थे, लॉयर्स, दलीलें, एक दूसरे पर इल्जाम, और यही प्रॉपर्टी के चक्कर में राघव की फैमिली बट चुकी थी, आधे इधर आधे उधर। यही प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ने उनकी पूरी फैमिली को तोड़ दिया था। उनके घर में ना शांति थी, हर महीने में कुछ ना कुछ लॉयर्स, कुछ ना कुछ ये वो, इन चीजों को लेकर राघव का बड़ा भाई और राघव दोनों बहुत दिनों से परेशान चल रहे थे। राघव ने आंखें बंद कर ली। एक हफ्ता मैं क्या लेकर जाऊंगा अपने बड़े भाई के पास, अगले ही पल उसने फैसला कर लिया। मैं कल सुबह सब कुछ ठीक कर दूंगा। राघव ने जैसे माने प्रण ले लिया कि वो अगले दिन सुबह जाकर उसके भाई के बीच में और उसके बीच में जो इतने दिनों से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था वो उसे सुलझा लूंगा। अगली सुबह राघव अपने भाई अरविंद के घर आया, दरवाजा खटखटाया। अरविंद ने दरवाजा खोला। दोनों भाई एक दूसरे के सामने थे, एक दूसरे को देखते रहे। सालों की दूरी उनकी आंखों में नजर आ रही थी। अरविंद ने थोड़े ठंडी आवाज में उनसे बोला, क्या काम है? राघव की आंखों में आंसू आ गए। भाई मुझे माफ करो, राघव ने कहा। अरविंद हैरान रह गया, तुम ठीक हो राघव? राघव ने कहा, भाई मुझे घर में नहीं बुलाओगे? हाँ हाँ अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। राघव और अरविंद दोनों चेयर पर बैठ गए। राघव की आंखें पश्चाताप से भरी हुई थी। उसके दिल पर मानो एक अजब सा बोझ था। वो बोझ के सहारे जैसे वो जी रहा। अरविंद ने कहा, राघव पानी पी। राघव ने पानी पिया। भैया ये फाइल प्रॉपर्टी केस की है, भैया मैं ये केस वापस ले रहा हूं। अरविंद शॉक में था। राघव तुम ठीक हो? कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ? कुछ मतलब कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? नहीं भैया, बस मैं ये केस वापस ले रहा हूँ, मुझे अब आपसे नहीं लड़ना है। ये प्रॉपर्टी, ये बंगला, ये सब आप रख लो, मुझे नहीं चाहिए कुछ, बस ये आप रख लो, मैं केस वापस ले लेता हूँ, मैं कोर्ट में अपने वकील से कह दूंगा कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, मैं जो पेपर पे आप बोलोगे उस पेपर पे साइन कर दूंगा, बस मुझे माफ कर दो, बस मुझे माफ कर दो। राघव ये कहते कहते रो पड़ा और रोते रोते वो अपने भाई के पैरों में गिर गया। अरविंद को ये देखा नहीं गया, उसने राघव को उठाया, अपने गले से लगाया और कहा कि नहीं मेरे भाई रोते नहीं हैं, शांत हो जा, मैंने तुझे माफ किया, शांत हो जा मेरे भाई, मैंने तुझे माफ किया। और ये कहते हुए दोनों भाई एक दूसरे के गले लग गए। उस दिन राघव का मन हल्का हुआ, उसके दिल पर जो बोझ था वो भी हल्का हुआ। अब राघव ने डिसाइड कर लिया था कि उसके जितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो इस एक हफ्ते में उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। जितने लोगों से उसके डिस्प्यूट चल रहे हैं, जितने लोग उससे नाराज चल रहे हैं, जितने लोग उससे परेशान हैं, उन सारे लोगों को वो जाकर मनाएगा, उनसे माफ़ी मांगेगा, उनकी जो परेशानियां हैं या जितनी भी तकलीफें उन्हें हुई है उन सारी चीज़ों के लिए वो जाकर उनसे माफ़ी मांगेगा। और इसी माफ़ी मांगने के अगले सिलसिले में अगला नंबर था उसकी बहन का।
1: अभी न जाओ छोड़ कर।

वेलकम दोस्तों, हम सुन रहे थे राघव की कहानी, जैसे कि उसने जाकर अपने भाई से माफी मांग ली और अगला नंबर था वो जाने वाला था अपनी बहन के घर अपनी बहन से माफी मांगने। तो राघव अपनी बहन के घर पहुंचता है और डोर बेल रिंग करता है और जैसे डोर खुलता है राघव अपनी बहन नेहा के चरणों में गिर जाता है और उसे कहता है, बहन मुझे माफ कर, मैंने बड़ी बदतमीजी से तुम्हारे साथ बिहेव किया था, तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, मैंने तुमसे तुम्हारी प्रॉपर्टी छीन ली, तुम्हें कुछ दिया नहीं और बस हर वक्त सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा, बहुत सेल्फिश था मैं, पर मैं अब सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, मैं नहीं रखना चाहता तुम्हारा कुछ, ये फाइल जो है मेरे पास ये तुम रख लो, इसमें तुम्हारी प्रॉपर्टी जो है वो मैंने तुम्हारे नाम कर दी है, ये जो तुम्हारा हिस्सा है ये मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है, बस बहन अब ये रख लो और मुझे माफ कर दो मेरी गलती के लिए। राघव को रोता हुआ देखकर उसकी बहन नेहा भी रोने लगी और उसने जैसे तैसे अपने भाई को शांत कराया। नेहा ने अपने भाई को माफ किया और दोनों चाय पीने लगे। चाय पीते पीते राघव ने सोचा कि अगले दिन वो अपने दोस्त कबीर और समीर इन दोनों से सॉरी कहेगा जो उसके बिजनेस पार्टनर्स थे और उसके बचपन के दोस्त भी थे। तो अगली सुबह राघव अपने घर से निकलता है, कबीर और समीर के ऑफिस में जाता है और उनसे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। दोनों उससे मिलने के लिए आते हैं बाहर, तीनों जाते हैं कैफेटेरिया में कॉफी पीने, जहाँ समीर और कबीर दोनों बैठे और दोनों को देखते हुए राघव बड़े भारी आवाज में और बड़ी पश्चाताप के साथ, उसकी आंखों में वो पश्चाताप नजर आ रहा था और उस पश्चाताप के साथ वो कबीर और समीर से सॉरी कहता है। जब राघव सॉरी कहता है तो कबीर और समीर देखकर शॉक हो जाते हैं और हंस पड़ते हैं, पागल है क्या यार, तू इतने साल के बाद मिलने आ रहा है और सॉरी बोल रहा है, हमने तो कभी इन चीजों को अपने दिल में रखा ही नहीं था, तू हमारा पहले भी दोस्त था, तू हमारा आज भी दोस्त है और तू हमारा हमेशा दोस्त रहेगा, इन चीजों से हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी, हाँ कुछ डिस्प्यूट्स हो गए थे बिजनेस को लेकर हमारे बीच में, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये धीरे धीरे सारी चीजें होते गई, राघव के दिल पर जो बोझ था वो धीरे धीरे उतरने लगा था। दिन गुजरते गए, राघव हर दिन किसी ना किसी से मिलता, किसी ना किसी से माफी मांगता, किसी ना किसी को गले लगाता, किसी को शुक्रिया बोलता। अब वो हर रात अच्छा महसूस करने लगा था, उसके अंदर की बेचैनी कम हो रही थी, उसे नींद आने लगी थी, दिल में एक अजीब सी शांति आने लगी थी। फिर आया सातवां दिन, सुबह राघव की आंख, उसने घड़ी देखी, फिर अपने हाथ देखे, फिर आसमान की तरफ देखा, मैं जिंदा हूं, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो तुरंत कार में बैठा और सीधे आश्रम की तरफ चला गया। संत अनंगिरी महाराज चबूतरे पर बैठकर ध्यान कर रहे थे, राघव भागते हुए उनके पास आया, बाबा बाबा मैं जिंदा हूँ। संत महाराज ने आंखें खोली, राघव खुशी से बोल पड़ा, मैं जिंदा हूँ, आपकी दुआ ने मुझे बचा लिया, अगर आप नहीं होते तो मैं मर जाता। संत महाराज हल्के से मुस्कुराए, फिर शांत आवाज में बोला, बेटा तुम मरने वाले तो थे ही नहीं। राघव हैरान रह गया, मतलब? संत बोले, मैंने तुमसे झूठ बोला। राघव बिल्कुल चुप हो गया। महाराज ने आगे कहा, तुम्हारी परेशानी मौत नहीं थी, तुम्हारी परेशानी तुम्हारा अहंकार था, तुम्हारे ग्रजेस थे, तुम सबसे लड़कर जी रहे थे,
इसीलिए तुम्हारा दिल भारी था और वो सब मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था। जब तुम्हें लगा कि जिंदगी सिर्फ एक हफ्ते की बची है तो तुमने सब कुछ छोड़ दिया, ईगो छोड़ दिया, लालच छोड़ दी, झगड़े छोड़ दिए, इसलिए तुम्हें सुकून मिल गया। राघव की आंखों से आंसू निकल गए। आनंदगिरी महाराज मुस्कुराए और धीरे से बोले, बेटा अगर इंसान हर दिन को अपना आखिरी दिन समझकर जी ले तो जिंदगी कभी भारी नहीं लगेगी। राघव उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और वहां से जब वो निकल पड़ा तो इस बार आश्रम से निकलने के बाद वो एक बिल्कुल नया आदमी था, एक ऐसा इंसान जिसके दिल में ना कोई ईगो था ना कोई छल कपट। अब उसने एक ऐसे रास्ते को थामा था जो सच का था और उस रास्ते पर वो आगे बढ़ना चाहता था। तो दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी हमारी परेशानियां बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन उन परेशानियों का हल काफी छोटा होता है। ठीक उसी तरह जैसे ताला चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो खुल जाता है महज एक छोटी चाबी से। तो हम अक्सर हमारी जिंदगी को ऐसे जीते हैं कि हमारा आखिरी दिन कभी आएगा ही नहीं, पर हम ये नहीं जानते कि मृत्यु ही आखिरी सत्य है और इस सत्य से भागा नहीं जा सकता, इसे हम टाल भी नहीं सकते। बस इस सत्य से हम थोड़े दूर हैं। ये सत्य को हमें कभी ना कभी महसूस करना है, इस सत्य की ओर हमें कभी ना कभी जाना है। तो बस इस कहानी का अंत करते हुए मैं आपसे यही कहूंगा कि हमेशा सच के साथ रहे, सत्य के मार्ग पर चले, क्योंकि सत्य ही हमें परमेश्वर की ओर लेके जाएगा, सत्य ही हमें परमेश्वर का दर्शन कराएगा, सत्य से ही परमेश्वर की प्राप्ति होगी और सत्य से ही हमें सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, हमने सुनी एक हफ्ते की जिंदगी की कहानी और इस कहानी का हो गया है अंत। हम मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, लेके आएंगे एक नई कहानी जिसमें होंगी कुछ मजेदार किस्से, कुछ कहानियां, कुछ शब्द, कुछ कहानियां, कुछ कविताएं और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शब्बीर शेख लेता हूँ आपसे अलविदा।

हर दिल पर छाई जायके की पहचान है, संस्कार और शक्ति का संगम हो जहां, ऐसे सुरीले मंच पर आपका स्वागत, यही हमारी शान है। आचार्य 90FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। एप्पड़ी किरोइंगा, हाउ आर यू ऑल, कैसे आहत सबे? अरे भाई, ठीक होना ही चाहिए क्योंकि आप सब है आचार्य 90FM योर ओन रेडियो के खास दोस्त, जिन्हें मिलकर हमें खुशी ही मिलती है। जब से आप पधारे हैं, महक उठा है स्वाद का जायका, घर आंगन ऐसा एहसास होता है जैसे भारतीय सीमा को आपने बनाया नायका। जोक्स अपार्ट, आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो ओरिजिनली अमेरिकन है, लेकिन उसमें मैंगो ऐड करके हमने उसे देसी रूप दे दिया है। वैसे बच्चा पार्टी स्पेशल ये रेसिपी हम हमारे नन्हे ऑडियंस के लिए खास बना रहे हैं। नॉन फायर टाइप की ये रेसिपी आप घर के बच्चों से जरूर बनवाइए। ईयर 1950 के दशक में मुंबई और दिल्ली में ये काफी फेमस रेसिपी थी। तो तैयार हो जाइए हमारी आज की रेसिपी को सुनने, जिसका नाम है मैंगो मिल्कशेक। एकदम टेस्टी और क्रीमी लगने वाला ये मैंगो मिल्कशेक दिखने में सुंदर

है ही, लेकिन इसका टेस्ट भी एकदम सुपर्ब है, सुपर से ऊपर है। तो चलिए अब हम इसकी रेसिपी सुनते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स, पके हुए अल्फोंसो मैंगोस 2, इन्हें धोकर छील ले और छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, ठंडा दूध 2 कप, शक्कर 2 चम्मच, बर्फ 2-3 टुकड़े, वनीला आइसक्रीम 2 स्कूप्स, सोक्ड मिक्स ड्राई फ्रूट्स 1 चम्मच, या मिल्क मसाला भी आप ले सकते हैं 1 चम्मच, और ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इसमें उतरने वाली है। अब हम मैंगो मिल्कशेक की रेसिपी सुनते हैं। मिक्सी के जार में आम के टुकड़े, बर्फ, दूध, शक्कर और वनीला आइसक्रीम डालिए। इसमें ढेर सारा प्यार भी ऐड कीजिए। अब इस मिश्रण को एकदम स्मूथ और क्रीमी होने तक मिक्सर में घुमाइए। लगभग 2 से 3 मिनटों में ये रेसिपी रेडी हो जाएगी। अब इसे सर्विंग ग्लास में निकालिए, ऊपर से ड्राई फ्रूट्स या मिल्क मसाला डालकर इसे सर्व कीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ। शक्कर के बदले आप हनी मींस शहद को यूज कर सकते हैं। ओरिजिनली अमेरिकन रेसिपी को हमने आम काटकर एकदम खास इंडियन स्टाइल से बना दिया है। इसका क्रीमी टेक्सचर, मीठी खुशबू और अपनापन आपको आम का खास एहसास जरूर कराएगा। वैसे समर वेकेशन में हमारे नन्हे ऑडियंस ये नॉन फायर और क्विक रेसिपी जरूर ट्राई कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर आप इसे जरूर बनाइए और मैंगो मूड एंजॉय कीजिए। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो। आज हम बात करेंगे भगवान चंद्र की मींस मून की। वैसे चांद का मतलब ठंडक है। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार चंद्रदेव का वाहन 3 पहिए वाला एक रथ है। इस रथ में 10 बलवान घोड़े जोड़े हुए हैं। ये सब घोड़े सफेद रंग के हैं और इन सभी घोड़ों की आंखें और कान भी सफेद है। और खास बात यह है कि ये दिव्य घोड़े मन के समान वेगवान है, मतलब जैसे हमारा मन कैसे सोचता है फटाफट, वैसे ये घोड़ों का स्पीड है। भगवान चंद्रदेव का वर्ण गोरा है और इनके वस्त्र, रथ और घोड़े सब सफेद रंग के ही है। भगवान चंद्रदेव इस रथ में कमल के आसन पर विराजमान है। इनके सिर पर सोने का मुकुट और गले में मोतियों की माला और इनके एक हाथ में गदा और दूसरा हाथ वर यानी आशीर्वाद मुद्रा में है। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी। वैसे आप अपने चांद को कौन से नाम से पुकारते हैं? मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो। वैसे आम का मीठा और रसीला स्वाद किसे पसंद नहीं? अक्सर हम आम से मिल्क शेक, आइसक्रीम, आचार ये सारी चीजें बनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस आम को सुबह के नाश्ते में यूज करके हम हमारे दिन की शुरुआत को कैसे खास कर सकते हैं? अब नाश्ते में हम कई चीजें खाते हैं, जैसे उपमा, पोहा, दलिया, सैंडविच, इडली, डोसा या फिर पराठा, राइट? तो आज हम बात करेंगे मैंगो पराठा रेसिपी की। ये एक ऐसी रेसिपी है जो टेस्टी और इनोवेटिव तो है ही, लेकिन ये आपके नाश्ते को भी एक नया ट्विस्ट देगी और गर्मियों के इस सीजन में स्वाद का जायका ऐड करेगी। तो पेश है आचार्य 90 FM के ऑडियंस के लिए मैंगो पराठा की रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स, गेहूं का आटा 2 कप, नमक 1/2 छोटा चम्मच, गरम घी 1 चम्मच, पानी आटा गूंथने के लिए। ये हो गया पराठे के आटे का जरूरी सामान। अब इसकी स्टफिंग के लिए हमें चाहिए पके हुए आम का पल्प 1 कप मींस लगभग 1 बड़ा आम, चीनी स्वादानुसार, यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच चीनी ले रही हूँ, इलायची पाउडर 1 चुटकी भर। वैसे 1 चुटकी इलायची पाउडर की कीमत तुम क्या जानो ऑडियंस बाबू, स्वाद का जायका है 1 चुटकी इलायची पाउडर, खुशबू का भंडार है 1 चुटकी इलायची पाउडर। वेल, जोक सपाट, अब आगे की इंग्रेडिएंट्स सुनते हैं। सौंफ 1/2 चम्मच, घी पराठे सेकने के लिए। अब हम इसे बनाते कैसे हैं वो सुनते हैं।
सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा और नमक मिलाइए, फिर उसमें थोड़ा गरम घी मिलाइए, मींस लगभग एक चम्मच। फिर थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर आटा गूंथ लीजिए। हमें आटा नरम गूंथना है, न ज्यादा सख्त न ज्यादा ढीला। फिर उस तैयार आटे को 15 टू 20 मिनट्स के लिए ढककर रखिए। इससे आटा सेट हो जाएगा। अब हम इसकी स्टफिंग बनाते हैं। एक मोटे बेस वाले पैन में मैंगो पल्प, शक्कर और इलायची पाउडर को मध्यम आंच पर पकाइए। इसे तब तक पकाना है जब तक ये मिश्रण गाढ़ा ना हो जाए और इसका सारा पानी सूख ना जाए। जब इसका टेक्सचर जैम जैसे हो और ये पैन से अलग छूटने लगे, तब आप इसमें सौंफ डालिए। अब इस स्टफिंग को ठंडा होने दें। ठंडा होने पर ये और गाढ़ा हो जाएगा। अब आप गूथे हुए आटे के नींबू के साइज के गोले बनाइए। हम आमतौर पर जैसे आलू के पराठे बनाते हैं ना, वैसे ही तैयार सामग्री से मैंगो पराठा बनाइए। मींस आटे को थोड़ा सा बेलिए, फिर हल्के हाथों से उसमें तैयार स्टफिंग भरकर उसे धीरे धीरे बेलिए। बी केयरफुल, अंदर की स्टफिंग बाहर ना आ पाए। फिर उसे मीडियम फ्लेम पर तवे पर सेकिए। जब वो पराठा दोनों तरफ से हल्का सा पक जाए, तब उस पर घी लगाकर गोल्डन कलर आने तक पराठे सेकिए। फिर इन गर्मा गर्म पराठों को एक सर्विंग प्लेट में निकालिए। दही, आम का अचार या डायरेक्ट ऐसे ही आप इसे एंजॉय कीजिए। भाई, मैंगो पराठा बनाकर मैं तो थोड़ी थक गई। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं भी मत जाइए। मैं यूं गई और यूं वापस आई।

ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और हमारे शो का नाम है स्वाद का जायका। आज हम बात करेंगे भारतीय पैरा स्पेशल फोर्सेस मींस पैरा एसएफ जवानों की। इंडियन आर्मी के सबसे एलीट और घातक कमांडो में इनकी गिनती होती है, जो अपनी क्रूर ट्रेनिंग और अदम्य साहस के लिए जाने जाते हैं। इस ट्रेनिंग में ड्रॉप आउट रेट 80% होता है। पैरा कमांडोज में सीधी भर्ती नहीं होती है, ये सिर्फ भारतीय सेना के मौजूदा सर्विंग पर्सोनल से चुने जाते हैं। इनका प्रोबेशन पीरियड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, जिसमें विद इन 3 months पीरियड 80% से ज्यादा जवान ड्रॉप आउट होते हैं। ये कमांडो 30,000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट के माध्यम से कूदने में एक्सपर्ट होते हैं। टोटल 9 पैरा एसएफ को उनकी मैक्सिमम सीक्रेटिव ऑपरेशन के कारण घोस्ट ऑपरेटर्स के नाम से जाना जाता है। ये पैरा एसएफ जवान रेगिस्तान, ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों में लड़ने के लिए ट्रेंड होते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ये स्मॉल ग्रुप्स बनाकर दुश्मन के इलाके में घुस जाते हैं और वहां पर इम्पोर्टेंट टारगेट को डिस्ट्रॉय करते हैं। हमें नाज है भारत के ऐसे वीर जवानों पर जो अपनी जान की बाजी लगाकर अपने देश की रक्षा करते हैं। आचार्य 90 FM के ऑडियंस की तरफ से हम सब आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। हम हमारे प्यारे ऑडियंस से अब पूछना चाहते हैं कि क्या आपने इंडियन मार्कोस मरीन कमांडोज के बारे में सुना है क्या? आज हम इंडियन नेवी सील्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। इन जावाज सैनिकों को मगरमच्छ के नाम से भी जाना जाता है। ये कमांडोज आकाश, धरती और जल कहीं पर भी दुश्मन को सिर्फ 27 सेकंड्स में खत्म करने की कैपेसिटी रखते हैं। सिर्फ 27 सेकंड। इनकी मोस्ट डिफिकल्ट ट्रेनिंग की वजह से ये आतंकियों के लिए यमराज माने जाते हैं। 2.5 से 3 साल की ट्रेनिंग के बाद 1,000 में से सिर्फ एक सिपाही मार्कोस बन पाता है। इनकी खास बात ये है कि सी सरफेस से 55 मीटर्स नीचे 15 मिनट ये बिना ऑक्सीजन के लड़ सकते हैं। मार्कोस कमांडोज अपनी हाई लेवल फिजिकल फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ और परफेक्ट टारगेट के लिए एकदम फेमस हैं। हम नमन करते हैं भारत माता के उन सपूतों को जो इतनी खतरनाक सिचुएशन को पार कर हमारे देश की रक्षा करते हैं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। अब पेश है देशभक्ति पर छोटी सी कविता। कविता का नाम है मेरा देश। अपने देश की रक्षा करना केवल सैनिकों का कर्तव्य नहीं, देशभक्ति को मन में रखना ये बात है कितनी सही। देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम, कोई पूछे तो गर्व से कहेंगे भारतीय है हम। सरहद की हर हद पर तुम हो, लेते हैं जो स्वतंत्र सांस हम, उस हर सांस के रक्षक हो तुम। लेते हैं जो स्वतंत्र सांस हम, उस हर सांस के रक्षक तुम हो। कभी कारगिल में रखवाली या हो मुंबई में गोलीबारी, और इन्हीं से अपने हुनर दिखाएं। अनोखा सा इनका काम का अंदाज, अच्छे से करते हैं दुश्मन का इलाज। चाहे हो रात घनी या हो भोर, सख्त इनका पहरा देश के चारों ओर। हर चप्पे पर सुरक्षा आपकी, जल धरती और आसमान, भारत की सुरक्षा में है आपका अमूल्य योगदान। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM। वैसे हमारे वीर जवान मीन सैनिक दिन रात देश की सेवा में जुटे हुए हैं। इनके शौर्य की कई कहानियां अनकही भी है, इसलिए कहते हैं कि राह संघर्ष की चलता है, वो जो संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है।
भाई सूरज की चमक हरियाली में देखने का एक अलग सा मजा है, लेकिन हमारे आसपास के पेड़ अगर कम होते गए तो हरियाली कैसे दिखेगी भाई। लॉकडाउन के समय हमारे देश में कई अच्छी बातों की शुरुआत हुई, इसमें से एक है द ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ग्रीन वॉल इस नाम से ही पता चलता है कि ये नेचर से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। ये ग्रीन वॉल गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुंचती है। ये फेमस ग्रीन वॉल 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी है। वैसे जंगल में कई तरह के पेड़, पंछी और जानवर होते हैं, लेकिन हमने अपने फायदे के लिए जंगल को काटकर बंजर जमीन बनाई है और इस वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। इसका नतीजा ये होता है कि हमें ग्लोबल वार्मिंग, राइज इन सी वाटर लेवल और बाढ़ का सामना करना पड़ता है। टाइम बीइंग एसी और पंखे को चलाकर हम टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो है ही नहीं। खेती के कामों में मेहनत और खर्चा होता है और खेतों में की गई मेहनत के अलावा हवा और पानी भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। एयर वाटर और सॉइल पोल्यूटेड करने से हम खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। तो भाई अब इसका सॉल्यूशन ये है कि पेड़ लगाओ और उनकी देखभाल करो। वैसे अरावली ग्रीन वॉल को

एज अ मीडियम यूज करके हमने जंगली जानवरों के लिए एक सेफ जगह तो बना ही ली है। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में फैली ये ग्रीन वॉल 29 जिलों को कवर करती है। इस प्रोजेक्ट से बंजर जमीन को हरी भरी बनाना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। इससे पोल्यूशन कंट्रोल होगा और ना पानी की कमी होगी, खेती करने लायक जमीन, जंगली जानवरों का रक्षण, ऐसे फायदे भी होंगे। इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होगी, जैसे कि जंगल सफारी, वनौषधि से रिलेटेड कारोबार वगैरह। वैसे आपने कभी किसी जंगली जानवर को नजदीक से देखा है क्या? यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार हम आपसे और भी बातें करेंगे। आई विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। तब तक स्टे ट्यून्ड।

बजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। वैसे हरियाली जितनी ज्यादा होगी गर्मी उतनी ही कम होगी, फिलहाल जो है सो है। यहाँ हमारे आसपास कोई ग्रीन वॉल तो है नहीं, तो बेचारे पंछी और जानवर करे तो क्या करें। यहाँ पर ना कोई नदी है, ना कोई तालाब या झरना, तो हम हमारे इन दोस्तों के लिए एक छोटा सा हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर सकते हैं। वो कैसे, तो सुनिए। हम किसी कंटेनर में पानी भरकर किसी छांव वाली जगह पर उसे रख सकते हैं। हमारे घरों के आसपास जो फोर व्हीलर्स पार्क की है उसके नीचे कुत्ते और बिल्लियां हांफते हुए छुप जाते हैं। अब बेचारे जाए भी तो कहां जाए, तो इनके पानी पीने का इंतजाम हम कर ही सकते हैं। अब सपोज आपने वाटरमेलन या फिर मस्क मेलन खाया, तो उसके छिलके के पास वाला उसका हिस्सा आप पंछियों को खिला ही सकते हैं। उसे क्यों कचरे में फेंकना, अदरवाइज डिहाइड्रेशन की वजह से बेचारे पंछी भी बीमार पड़ सकते हैं। वैसे आपका फेवरेट पंछी कौन सा है,

मैं भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि आपका फेवरेट पंछी कौन सा है। भाई फिलहाल तो मैंगो सीजन चल रहा है और गर्मियों में सुबह सूरज जल्दी उगता है। हर एरिया में सुबह कुहू कुहू की मधुर आवाज से लोग जग जाते हैं, है कि नहीं। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ एशियन कोयल की। ये एक फेमस भारतीय पंछी है जो अपनी मधुर आवाज के लिए जानी जाती है। वैसे खास बात यह है कि कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है। इतनी चालाक होती है कि वो उसके पहले कौवे के अंडों को नीचे गिराती है। ये पंछी दिखता तो है कौवे की तरह, लेकिन इसकी आंखें लाल रंग की होती है। इन्हें मोस्टली आम के पेड़ों पर देखा जाता है, वैसे जामुन के पेड़ों पर भी ये कभी कभार दिखती है। ये पंछी फ्रूट्स, कीड़े और कैटरपिलर को खाती है। केवल मेल कोयल ही वसंत के मौसम में मधुर कुहू कुहू की आवाज निकालती है। इनकी पूंछ कौवे से थोड़ी लंबी होती है। वैसे कोयल को भारत की कई भाषाओं में कविता में इस्तेमाल किया जाता है। अफ्रीका से उड़कर ये पंछी हमारे भारत देश में आते हैं, माइग्रेशन करते हैं। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM। किसी ने क्या खूब कहा है, फूलों से सीखिए सबके जीवन में रंग भरना, पेड़ों से सीखिए ऊंचाइयों को छूना, कलियों से सीखिए मुस्कुराकर जीना, कांटों से सीखिए कष्टों से उभरना, पत्तों से सीखिए मस्ती में झूमते रहना और शाखों से सीखिए दूसरों को सहारा देना। क्योंकि प्रकृति कभी अपनी ही दी गई वस्तुओं पर अहंकार नहीं करती, लेकिन हम उन वस्तुओं का उपयोग करते हैं तब हमें सबक जरूर सिखाती है। जनाब, दुनिया की यही रीत है कि जो भी आप बांटते हैं वही चीज आपके पास बढ़ती है, चाहे वो धन हो या अन्न, सम्मान हो या अपमान, नफरत हो या प्यार। इसीलिए सोच समझकर बांटिए, क्योंकि वही लौटकर आपके पास आएगा। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और हमारे इस शो का नाम है स्वाद का जायका। वैसे बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच। समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार इंसान वो ही है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। अरे भाई, परेशानी जिंदगी का हिस्सा ही है। बगैर परेशानी इंसान की पर्सनालिटी निखार कैसे लाएगी, क्योंकि इन मुसीबतों से ही इंसान जिंदगी जीने का मतलब समझता है, है कि नहीं। और जब इन मुसीबतों को पार करके हम कामयाबी हासिल करते हैं तब हमें रुकना नहीं है। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष भी है, और जब तक संघर्ष है हमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है। कभी औरों की कामयाबी देखकर हम ये सोचते हैं कि ये इंसान कितना खुशनसीब है ना, लेकिन उस सफलता के पीछे कठिनाई से किया हुआ मुकाबला और बहुत सारी मेहनत भी होती है जनाब। एक बार सफलता मिलने पर हमें कुछ नया सीखना छोड़ना नहीं है, क्योंकि लड़खड़ाना, गिरना और संभलना, इसी का नाम तो जीवन है और यही जीवन का नियम है। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM। न जाने क्यों आपसे मिलने के बाद आपसे ही मिलने की चाहत रहती है। स्वाद का जायका सुनकर दिल को चैन की राहत सी मिलती है। इस शो पर करेंगे खाने और गाने का इंतजाम। गौर फरमाइए हमारे शो पर, वरना बेरुखी का लगेगा आप पर इल्जाम। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। बिछड़कर आपसे हमें कुछ और कहना नहीं, ये जुदाई परमानेंट नहीं, बस जल्द ही फिर से मिलना है। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला

0: कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।
1: भाई बहुत खूब गोई बाबू, बड़ा शुक्र नवाज है घर आपका। नौकर चाकर भी शायरी करते हैं।
2: मियां, शायरी सिर्फ दौलतमंदों की जागीर नहीं। तुम कुछ कह रहे थे बरखुरदार, चुप क्यों हो गए? कहो कहो।

0: तो फिर उस दिन तुमने मुझे वो दर्द भरी नज़्म क्यों सुनाई? मेरे सोए हुए जज्बात फिर से जाग उठे।
1: पिछली बातें भूल जाओ मीना।
0: भुला तो रही थी, अपनी जिंदगी को नए सांचे में ढाल लिया था मैंने, दिल को समझा लिया था मैंने, इस दिल को फिर से बेचैन करने के लिए दोबारा क्यों चलाया मेरी जिंदगी में?
1: मैं तुम्हारी जिंदगी से क्या ही कब था? तुम खुद ही चली गई थी मेरी जिंदगी से। वो तुम्हारी पहली गलती थी, उसे सुधारने के लिए अब दूसरी गलती ना करूंगी ना।
0: मैंने कोई गलती नहीं की। हर समझदार औरत को जिंदगी में प्यार के अलावा घरों बार की भी जरूरत होती है, थोड़ी बहुत दौलत के सहारे की भी जरूरत होती है, और यही चीजें पाने के लिए मैंने
1: मिस्टर घोष से ब्याह किया, यानी दौलत के लिए तुमने अपना प्यार बेच दिया।
0: गलत इल्जाम ना दो मुझे। तुमने मेरा प्यार पाया लेकिन तुम गरीब थे, बेरोजगार थे, जिंदगी में सिर्फ शायरी ही नहीं प्यार ही नहीं भूख भी है। जब तुम खुद अपना पेट नहीं पाल सकते थे, उस हालत में मुझसे ब्याह करके मेरा भार उठा सकते थे तुम?
1: उसका मौका ही कब दिया तुमने मुझे? जब इंसान के सर पे जिम्मेदारियां आ जाती हैं, वो उन्हें उठाना भी सीख जाता है। अपने आप को धोखा न दोगी ना? तुम दौलत चाहती थी, ऊंची सोसाइटी चाहती थी, सामाजिक नाम और इज्जत चाहती थी, और आज वो तमाम चीजें मिलने के बाद भी तुम बेचैन पछता रही, जानती हो क्यों? तुमने हमेशा अपना स्वार्थ देखा, इसलिए मेरी जिंदगी से जाते तुमने मेरी खुशी का ख्याल नहीं, और आज तुम अपने पति की खुशी छीनना चाहती? मीना, जिंदगी की असली खुशी दूसरों को खुश रखना।

अपनी माँ की इकलौती बेटी और अपने स्टेप डैड की पांचवी सेंटीज की सबसे खूबसूरत लड़की।

हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज ये शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका आचार्य 90 FM में। आप सुन रहे हैं कहानियों की गुल्लक, एक ऐसी गुल्लक जिसमें हम लेके आते हैं नई नई कहानियाँ और उस गुल्लक को भरते हैं कहानियों से। जैसे कि पिछली बार आपने सुना था अमन और विक्रम किस तरीके से जेल में है, एक दोस्त है पुलिस अफसर और दूसरा दोस्त है एक कैदी। कैदी के दिल में ये डर है कि कहीं उसे अब अंग्रेजी हुकूमत खत्म ना कर दे, और वही दोस्त जो पुलिस अफसर है उसके दिलो दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है कि वो अपने दोस्त को भी बचा ले और वहां से क्रांतिकारियों की फाइल भी चुरा ले। तो देखते हैं कहानी का अगला हिस्सा। 1931 की सर्द रात, जेल के अंदर हवा भी अजीब सी लगी थी, दीवारें मोटी थी, लोहे के दरवाजे भारी आवाज के साथ बंद होते थे और हर कोने में एक अजीब सा सन्नाटा बसा हुआ था। इसी जेल के अंदर कमरे में बैठा था विक्रम सिंह, उसके हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे, चेहरे पर थकान थी, कपड़ों पर खून के छोटे छोटे दाग थे। अंग्रेज सिपाहियों ने उसे पकड़ने के बाद से ही पूछताछ शुरू कर दी थी। आजाद सेना मंडल के लीडर कौन है, फाइल्स कहां छुपा रखी है, कौन कौन शामिल है तुम्हारे ग्रुप में, न जाने ऐसे कितने अनगिनत सवाल अंग्रेजी हुकूमत पूछने लगी। अंग्रेजी सिपाही मारने लगे पर विक्रम टस का मस नहीं हुआ। विक्रम के दिल में, विक्रम के दिमाग में, उसके पूरे बदन में, उसके पूरे शरीर में, उसके बदन के खून में, हर दौड़ती हुए खून में, हर नसों में, रग रग में बस एक ही चीज थी, आजादी, आजादी, आजादी। इसीलिए इतनी मार, इतनी चोटें, इतनी वेदनाएं सहने के बाद भी विक्रम ने जवाब नहीं दिया, बस चुप रहा। कभी कभी वो मुस्कुराता भी था और उस मुस्कुराहट से अंग्रेज और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते थे। एक सिपाही ने उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा, बोल वरना जिंदा नहीं बचेगा। विक्रम धीरे से बोला, आजादी के लिए मरना कोई सजा नहीं होती। सिपाही गुस्से से लाल हो गया, उसने डंडा उठाया और फिर से विक्रम पर बरसा दिया। कमरे में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, डंडे की। कैप्टन हॉकिंस का सवाल, अगली सुबह में जेल में एक गाड़ी रुकी, उस गाड़ी से उतरकर सीधा जेल के अंदर आया एक आदमी, लंबा कद, सफेद यूनिफॉर्म और आंखों में वही ठंडी सख्ती, कैप्टन एडवर्ड हॉकिंस, जेल सुपरिटेंडेंट उसके सामने सीधा खड़ा हो गया। सर, ये वही लड़का है, क्रांतिकारी। हॉकिंस धीरे से विक्रम के पास आया, उसने उसका चेहरा पकड़ा और ऊपर उठाया। तुम जैसे जवान अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हो, हॉकिंस ने उससे कहा। विक्रम ने थूक दिया जमीन पर। जिंदगी बर्बाद नहीं, कुर्बान करते, विक्रम ने बड़े फक्र से कहा। हॉकिंस थोड़ा हंस पड़ा। तुम लोगों को लगता है तुम अंग्रेजी हुकूमत गिरा दोगे? विक्रम ने सीधा जवाब दिया, एक दिन जरूर। हॉकिंस कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसने गार्ड को इशारा किया, इसे तोड़ दो, कल तक बोलना शुरू कर देगा। उसी वक्त जेल के कॉरिडोर में एक और ऑफिसर खड़ा था, यूनिफॉर्म पहने हुए, टोपी आंखों पर थोड़ी झुकी हुई, सब इंस्पेक्टर अमन खान। वो सब कुछ देख रहा था मगर उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक सिपाही ने पूछा, सर आप अंदर आना चाहेंगे? अमन ने बस इतना कहा, ड्यूटी कंप्लीट होने में।
मगर जब हॉकिंस वहां से चला गया तब अमन धीरे से सेल के पास आया। गार्ड कुछ दूर खड़ा था। अमन ने धीरे से कहा, विक्रम। विक्रम ने सर उठाया। उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी थी, फिर वो थोड़ा हंस पड़ा। तो सच है? अमन चुप रहा। तुम उनके आदमी बन गए? अमन धीरे से बोला, ये सब नाटक है। विक्रम ने सर हिला दिया। नाटक? नाटक भी कभी कभी सच बन जाता है अमन। विक्रम, अमन की आंखों में पहली बार दर्द दिखा। मैं तुम्हें यहां से निकालूंगा। विक्रम थोड़ा हंसकर कहने लगा, अभी भी प्लान बना रहे हो? अमन ने कहा, मैं फाइल्स के करीब हूं, हॉकिंस के भी। विक्रम ने उसकी तरफ देखा, अगर तुम सच में उनके साथ हो तो आज ही मुझे गोली मार दो। अमन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, विक्रम मैं तुम्हें बचाने आया। क्या तुम्हें मेरे अंदर अब तुम्हारा बचपन का दोस्त नजर नहीं आता? वो दोस्त जिसने तुम्हारे साथ मिलकर आजादी की कसमें खाई थी, वो दोस्त जिसने तुम्हारे साथ मिलकर आजादी का सपना देखा था, वो दोस्त जिनकी लोग मिसाल देते थे, वो दोस्त जिसके लिए तुम ही सब कुछ हो। अमन के इतना सब कुछ कहने के बावजूद विक्रम की आंखों में शक बस चुका था। विक्रम को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वो अमन पर भरोसा करे या ना करे। उसके दिल में एक अलग सी कश्मकश चल रही थी। उसे ऐसे लग रहा था कि शायद अमन ही उसे गोली मार दे या अमन ही उसे खत्म कर दे। उसे ये भी लग रहा था कि अमन वो फाइल्स जल्द से जल्द ढूंढ निकालेगा या अमन उनके सीक्रेट मिशंस को लेकर, क्रांतिकारियों के छुपने के ठिकानों से लेकर क्रांतिकारियों के नाम, उनका घर, वो सब कुछ जानकारी अंग्रेजी हुकूमत को दे देगा। दोनों के दिल में न जाने कितने अनगिनत सवाल थे और वो दोनों के पास उन दोनों सवाल के कोई जवाब नहीं। बस अमन ये सोच रहा था कि कैसे वो विक्रम को बचा ले और फाइल्स को वहां से चुरा ले। वही दूसरी ओर विक्रम के दिल में भी रुक रुक कर बस एक ही आस उठ रही थी और वो ये थी कि अमन गद्दार ना निकले, बस अमन जैसे पहले था, क्रांतिकारी, आजादी के लिए लड़ने वाला, वो आखिर में भी बस ऐसे ही निकला, एक क्रांति की तरह, एक क्रांतिकारी की तरह। तो कहानी का अगला भाग सुनेंगे हम अगले हिस्से में। तब तक आप सुनते रहिए आचार्य 90 FM।

तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का ब्रेक के बाद। आप सुनते हैं कहानी का आखिरी हिस्सा और इस हिस्से में हम बात करेंगे कि कैसे विक्रम जेल में है और कैसे अमन फाइल्स को चुरा लेता है या नहीं लेता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। अभी उस रात लखनऊ ब्रिटिश ऑफिस में एक मीटिंग हुई। हॉकिंस टेबल के हेड पर बैठा था। उसने एक फाइल टेबल पर पटकी। क्रांतिकारी बढ़ रहे हैं, अब वक्त आ गया है सख्ती का, हॉकिंस ने कहा। एक ऑफिसर ने पूछा, सर क्या ऑर्डर है? हॉकिंस ने तेज आवाज में कहा, सिक्योरिटी सप्रेशन पॉलिसी, जो भी क्रांतिकारी पकड़ा जाए उसे सीधे मार दो। रूम में कुछ पल की खामोशी छा गई। अमन भी उसी मीटिंग का हिस्सा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीमी आवाज में पूछा, सर ट्रायल? हॉकिंस हंस पड़ा, जस्टिस इज अ लग्जरी इन वॉर। कल सुबह उस लड़के विक्रम सिंह को एग्जाम्पल बना देते हैं, हॉकिंस ने कहा। अमन काफी शांत हो गया इसमें। रात के अंधेरे में अमन जेल के अंदर गया। गार्ड को उसने कहा, कैप्टन का ऑर्डर है प्रिजनर्स को शिफ्ट करना। गार्ड ने दरवाजा खोला। सेल के अंदर विक्रम बैठा था। अमन उसके पास आए, आज रात भागना होगा, अमन ने कहा। विक्रम ने उसकी तरफ देखा, तुम्हें लगता है

विक्रम सिंह डर गया, मगर अगर मर गया तो लोग कहेंगे एक और क्रांतिकारी शहीद हो गया। अमन कुछ बोल नहीं पाया। उस रात दोनों दोस्त चुप बैठे रहे, जैसे बचपन के वो दिन याद कर रहे हैं। वही बरगद का पेड़, गांव की गलियां और आजादी के सपने, और यही सारी बातें सोचते हुए, इनके सपने देखते हुए सुबह का सूरज निकल आया। अगली सुबह जेल के कोर्टयार्ड में लाइन लग गई। ब्रिटिश सोल्जर्स खड़े थे, बीच में खड़ा था विक्रम सिंह। उसके हाथ अब बंधे नहीं थे, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति। कॉकिंस सामने खड़ा था। उसने पूछा, लास्ट वर्ड्स? विक्रम ने आसमान की तरफ देखा, फिर जोर से चिल्लाया, आजादी। फिर उसकी नजर अमन पर पड़ी। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिली। विक्रम ने बस इतना कहा, अपना ध्यान रखना दोस्त। अमन की उंगलियां कांप रही थी, मगर वो कुछ नहीं कर पाया। हॉकिंस ने हाथ उठाया, फायर! गोलियों की आवाज कोर्टयार्ड में गूंजने लगी, और उस पल एक दोस्त जमीन पर गिर गया। सब मातम में बदल गया।

गोली चलाने के बाद सब लोग वहां से चले गए। कोर्टयार्ड खाली हो गया, बस एक आदमी वहां खड़ा था, अमन खान। वो धीरे से विक्रम के पास आया, जमीन पर बैठा। उसने उसके खून से भीगे हाथ को पकड़ा और धीरे से कहा, तुमने कहा था ना, बदला नहीं आजादी। अमन की आंखों में आंसू थे, मगर उसकी आवाज अब बिल्कुल ठंडी हो गई।

आजादी। और उस पल ब्रिटिश यूनिफॉर्म पहने हुआ एक आदमी अंदर ही अंदर क्रांति बन चुका था, एक ऐसी क्रांति जो पूरी ब्रिटिश आर्मी को चलाने वाली थी, ब्रिटिश सोल्जर्स को चलाने वाली थी, पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चलाने वाली थी। कुछ दिन बीत गए, महीने बीत गए, एक साल बीत गया, और अब लोग एक नाम लेने लगे थे, सब इंस्पेक्टर अमन खान। ब्रिटिश ऑफिसर्स उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत इफिशियंट था, क्रांतिकारियों को पकड़ने में सबसे आगे। कई सीक्रेट हाइडआउट्स उसने रेड करवाए, कई लोगों को जेल भेजा। ब्रिटिश ऑफिसर्स कहते थे ये आदमी लॉयल है, मगर सच कुछ और था। एक दिन रात के अंधेरे में अमन एक पुरानी हवेली में गया, अंदर कुछ लोग बैठे थे, आजाद सेना मंडल के बचे हुए मेंबर्स। उनका लीडर अब एक नया आदमी था, इकबाल हुसैन। इकबाल ने अमन को देखा, उसकी आंखों में शक था। हम तुम पर भरोसा क्यों करें, इकबाल ने कहा। अमन ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि विक्रम सिंह मेरा दोस्त था।

खामोशी छा गई। अमन ने टेबल पर एक फाइल रखी। ये हॉकिंस की सिक्योरिटी डिटेल्स है। सब लोग हैरान हो गए। तुम ये सब कैसे ले आए? अमन ने बस इतना कहा, मैं उस आदमी को मारना चाहता हूं। फाइल में सब कुछ था, हॉकिंस का रूटीन, गार्ड शिफ्ट टाइमिंग्स और एक इम्पोर्टेंट बात, हर फ्राइडे रात वो लखनऊ रेसिडेंसी क्लब जाता है शराब पीकर, पार्टी करता। अमन ने मैप खोला, यही मौका है और इसी जगह हमें उसे मारना होगा। इकबाल ने पूछा, तुम गोली चलाओगे? अमन ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ मैं उसे खुद खत्म करूंगा। अगली शाम हॉकिंस और अमन एक जीप में जा रहे हैं। हॉकिंस ने सिगरेट जलाई और कहा, तुम बहुत काम के ऑफिसर हो। अमन चुप रहा। हॉकिंस ने हंसकर कहा, तुम जैसे लोग ही ब्रिटिश राज को स्ट्रांग बनाते हैं। अमन ने धीरे से पूछा, सर आपको कभी लगता है कि लोग आज़ादी चाहते हैं? हॉकिंस हंस पड़ा, पीपल ऑलवेज वॉन्ट समथिंग, मगर पावर उनके पास होती है जो रूल करते हैं। अमन ने उसकी तरफ देखा और उस पल उसे विक्रम का खून याद आ गया। फ्राइडे रात रेसिडेंसी क्लब रोशनी से जगमग कर रहा था। अंग्रेज ऑफिसर्स म्यूजिक और शराब में डूबे हुए थे। हॉकिंस एक कॉर्नर टेबल पर बैठा हुआ था, अमन उसके पास खड़ा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, मगर बाहर अंधेरे में आजाद सेना मंडल के लोग तैयार थे। प्लान सिंपल था, 10:30 बजे लाइट चली जाएगी और उस पर कैप्टन हॉकिंस मरेगा। मगर अमन के दिमाग में एक और प्लान चल रहा था, एक ऐसा प्लान जिसे सिर्फ हॉकिंस नहीं पूरी ब्रिटिश पॉलिसी को एक मैसेज मिलने वाला था। और उस रात लखनऊ के क्लब में अंधेरे में एक गोली चलने वाली थी, जो सिर्फ एक आदमी को नहीं एक दोस्ती का बदला भी पूरा करने वाली थी। एक आदमी की नहीं बल्कि एक दोस्ती की, एक आज़ादी की मिसाल बनाने वाली थी। तो ठीक 10:30 बजे लाइट चली गई। अमन ने अपनी पिस्तौल निकाली। वो पिस्तौल उसने हॉकिंस के सर पर रखी और एक के बाद एक ऐसी 3 गोलियां उसके सर में डाल दी और वहां से आजादी आजादी आजादी चिल्लाते अमन बाहर भाग आया। और इस तरह एक दोस्त ने अपने दोस्त का बदला पूरा किया। जो लोग अमन को गद्दार समझते थे, उसने वो अपने गद्दारी का कलंक मिटाया, जो कि वो कभी गद्दार नहीं था, पर उसकी मंशा साफ थी कि वो छुपके से ही एक सीक्रेटिव तरीके से ही क्रांतिकारी बन के रहेगा, मगर अब वो एक खुला क्रांतिकारी था। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, 2 दोस्त और 1 बदला ये कहानी सुनने के लिए। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी सारी कहानी अच्छी लगती होगी। तो सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अगली बार फिर से लौटूंगा एक अलग कहानी लेकर, जिसमें होंगे बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी बातें और कुछ छोटी मोटी नोकझोंक। तब तक के लिए बाय बाय।

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य 90 FM में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शब्बीर शेख स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक बार कहानियों की गुल्लक में। जैसे कि पिछली दफा हमने सुना था कैसे प्री इंडिपेंडेंस एरा में एक प्रेम कहानी पनपने लगी थी और उस कहानी का अंत किस तरीके से हुआ, आज भी मैं लेके आया हूँ एक ऐसी कहानी। ये कहानी थोड़ी लंबी है पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। जैसे पिछली कहानी में हमने बात की थी एक क्रांतिकारी की, एक प्रेमी की, एक प्रेमी जिसे अपनी मोहब्बत देश के प्रति जितनी थी उतनी थी अपनी प्रेमिका के प्रति भी, पर देश उसके लिए सर्वोपरि था और देश के बाद ही सब कुछ आता था। अब मैं लेके आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसका शीर्षक है दो दोस्त और एक बदला। 1929 का हिंदुस्तान, अंग्रेजी हुकूमत अपनी पूरी ताकत से देश को दबाए बैठी थी। हर शहर में पुलिस चौकियां, हर गली में डर का माहौल और हर दिल में एक ही ख्वाहिश, आजादी। लेकिन आजादी की कहानी सिर्फ जंग की नहीं होती, कभी कभी वो कहानी होती है दोस्ती की, कभी वफादारी की और कभी बदले की। ये कहानी है दो दोस्तों की, दो ऐसे दोस्त जिनके रास्ते एक ही थे मगर मंजिल तक पहुंचते पहुंचते सब कुछ बदल गया। नंदपुर एक छोटा सा गांव था लखनऊ से कुछ ही दूर। गांव में मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और आम के पेड़। सुबह गांव में मुर्गों की आवाज से होती और शाम को चूल्हों की खुशबू हवाओं में घूमती थी। इसी गांव में दो बच्चे बचपन के दोस्त रहते थे, अमन खान और विक्रम सिंह। दोनों की दोस्ती बचपन से ही मशहूर थी। गांव वाले कहते थे ये दोनों अलग हो ही नहीं सकते, एक रोए तो दूसरा उसे चुप कराए। अमन थोड़ा शांत था, सोचने समझने वाला। विक्रम तेज था, उसकी आंखों में हमेशा आग सी जलती रहती थी। एक बबार जब वो दोनों सिर्फ 10 साल के थे तो गांव में एक अंग्रेज ऑफिसर आया था, उसका नाम था कैप्टन एडवर्ड हॉकिंस। उस दिन गांव के लोगों को जबरदस्ती लाइन में उसने खड़ा कराया, टैक्स बढ़ाया। जब एक बुढ़े किसान रामदास ने थोड़ा विरोध किया तो फिर क्या, अंग्रेजी सिपाहियों ने उसे सबके सामने पीट दिया। छोटा सा विक्रम वो सब देख रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। अमन एक दिन में इन सब का बदला लूंगा, अमन ने विक्रम की ओर देखा। बदला नहीं विक्रम, आजादी। समय बीता, दोनों बड़े होने लगे, अब वो जवान हो चुके थे। 1928 तक पूरे देश में आजादी की आवाज तेज हो चुकी थी। भगत सिंह का नाम लोग चुपके चुपके लेने लगे थे। चंद्रशेखर आजाद की कहानियां लोग रात को आग के पास बैठकर सुनाते थे और नंदपुर के दो जवान भी अब चुप नहीं रहना चाहते थे। एक रात दोनों आम के पेड़ के नीचे बैठे थे, हवा थोड़ी ठंडी थी। विक्रम ने धीरे से कहा, अमन हम भी कुछ करते हैं यार। अमन ने पूछा, क्या? विक्रम की आंखों में वो बचपन वाली आग थी। क्रांति, लखनऊ में एक गुप्त क्रांति दल था, नाम था आजाद सेना मंडली। उसके लीडर थे रघुनाथ बाबू, वो एक स्कूल टीचर थे मगर असली काम था रिवॉल्यूशनरीज को ऑर्गेनाइज करना। एक रात अमन और विक्रम उनसे मिलने गए। छोटी सी हवेली थी, अंधेरा था, दरवाजा खुला था, अंदर एक दिया जल रहा था। रघुनाथ बाबू ने दोनों को देखा, तुम लोग जानते हो क्रांति का मतलब क्या होता है?
विक्रम तुरंत बोला, अंग्रेजों को भगाना। रघुनाथ बाबू मुस्कुराए, उससे भी ज्यादा अपनी जान दांव पर लगाना। अमन ने सीधा जवाब दिया, हम तैयार हैं। रघुनाथ बाबू कुछ देर तक उन्हें देखते रहे, सोचते रहे, फिर धीरे से बोले, तो फिर आज से तुम दोनों आजाद सेना मंडल के हिस्सा हो। तुम दोनों को ट्रेनिंग और मिशन के बारे में कुछ दिनों में बता दिया जाएगा। अब आने वाले अगले कुछ महीनों में दोनों की जिंदगी बदल गई। दिन में वो आम गांव वाले जैसे जवानों की तरह रहते थे और रात में वो बन जाते थे क्रांतिकारी। उन्हें सिखाया गया था सीक्रेट मैसेज कैसे भेजना है, कोड कैसे यूज करना है, चिट्ठियां कैसे लिखनी है, तार कैसे पहुंचाने हैं, अपने संगठन का मिशन कैसे दूसरों को बताना है, पुलिस से कैसे बचना है, और सबसे जरूरी, खुद पर काबू कैसे रखना है। एक रात ट्रेनिंग के बाद विक्रम ने अमन से पूछा, अमन अगर कभी हम में से किसी को कुछ हो गया तो? अमन थोड़ा चुप रहा, फिर बोला, तो दूसरा लड़ता रहेगा। 1930 के आसपास अंग्रेज सरकार ने एक नया कानून पास किया था, नाम था सिक्योरिटी सप्रेशन पॉलिसी। इसका मतलब था बिना वजह गिरफ्तारी, बिना ट्रायल जेल, और जरूरत पड़ने पर इनकाउंटर। यह पुलिस बनाने वाले ऑफिसर का यह पॉलिसी बनाने वाले ऑफिसर का नाम था कैप्टन एडवर्ड हॉकिंस, वही आदमी जिसने बचपन में रामदास को मारा था, जिसने नंदपुर के लोगों को डराया था, और अब वो लखनऊ का सबसे पावरफुल अंग्रेज ऑफिसर था। रघुनाथ बाबू ने एक दिन सब क्रांतिकारियों को बुलाया, सब क्रांतिकारी एक जगह इकट्ठा हो गए। रघुनाथ बाबू ने मैप टेबल पर रख दिया, ये हॉकिंस इस वक्त पूरी क्रांति को क्रश करने की प्लानिंग कर रहा है। रघुनाथ बाबू ने कहा, विक्रम का हाथ टेबल पर जोर से पड़ा, तो फिर उसे खत्म कर देते हैं, विक्रम ने कहा। रूम में खामोशी छा गई। रघुनाथ बाबू ने धीरे से कहा, हर गोली एक जंग शुरू करती है और हर जंग में खून बहता है। अमन ने पूछा, प्लान क्या है? रघुनाथ बाबू ने कहा, हमें हॉकिंस की फाइल्स चाहिए, उसमें सब क्रांतिकारियों की लिस्ट है। अगर वो फाइल्स मिल गई तो हम सब बच सकते हैं, वरना उस फाइल्स में हम सभी के नाम हैं, और ये अंग्रेजी हुकूमत हम सबको एक एक करके ढूंढेगी, और फिर उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जैसे रघुनाथ बाबू ने ये कहानी कही, ये बात बताई, सब लोग शांत हो गए, और अचानक से उस कमरे में

तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का ब्रेक के बाद आचार्य 90 FM में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आपको सुना रहा था एक कहानी, दो दोस्त और एक बदलाव, जिसमें आपने अभी तक सुना है कि अमन और विक्रम दोनों एक क्रांतिकारी दल से जुड़ चुके हैं और एडवर्ड हॉकिंस किस तरीके से अपनी नई पॉलिसी लोगों पर थोप रहा है और उसके जरिए वो लोगों को परेशान कर रहा है। और इस समय उस क्रांतिकारी दल का मकसद है सिर्फ उन फाइल्स को चुराना जिनमें क्रांतिकारियों के नाम छुपे हुए हैं। तो देखते हैं कहानी का आगे वाला हिस्सा। फाइल लखनऊ के ब्रिटिश सेक्रेटरियल में थी, वहां घुसना मुश्किल था, मगर अमन ने एक आइडिया दिया। अगर कोई अंग्रेज सरकार में ही काम करे तो कैसे रहेगा? सब उसकी तरफ देखने लगे। विक्रम ने हैरानी से पूछा, मतलब? अमन ने धीरे से कहा, मैं ब्रिटिश पुलिस ज्वाइन करूंगा। रूम में सब स्टंड थे, सब शांत थे। तुम पागल हो गए हो क्या? विक्रम चिल्लाया। अमन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, ये सिर्फ एक रोल होगा अंदर घुसने के लिए। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। लोग तुम्हें गद्दार कहेंगे अमन। अमन ने शांत आवाज में जवाब दिया, आजादी के लिए कभी कभी गद्दार बनना पड़ता है। उस रात विक्रम और अमन नंदपुर के उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। हवा तेज चल रही थी। विक्रम गुस्से में था। तुम अंग्रेजों के साथ काम करोगे? अमन, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। तुम्हारा ये आइडिया बकवास है, तुम ये छोड़ दो। लोग तुम्हें गद्दार कहेंगे, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, अमन ने कहा। विक्रम, अंग्रेजों के साथ काम करना सिर्फ एक दिखावा होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और हम दोनों के लिए और हमारे पूरे देश के लिए फिलहाल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई कुछ है तो वो है आजादी। पर दुनिया को क्या पता होगा? विक्रम बोला। दुनिया को नहीं, तुम्हें पता है ना। मुझे दुनिया से क्या लेना देना विक्रम? तुम जानते हो ये केवल एक रोल है आजादी के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं। तुम जानते हो, तुम्हें सच्चाई पता है, मुझे इसके अलावा किसी और से कुछ लेना देना नहीं है। ये बातें सुनकर विक्रम की आंखों में आंसू आ गए और आंसुओं को पोंछते हुए उसने कहा, बस एक बात याद रखना अमन, अगर तुम सच में उनका हिस्सा बन गए तो सबसे पहले गोली मैं चलाऊंगा। अमन मुस्कुराया। तब तक मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा। दोनों हंस पड़े, मगर उस रात दोनों को पता नहीं था ये फैसला उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। फिर क्या, अमन चल पड़ा एक अलग सफर पर और विक्रम चल पड़ा एक अलग सफर पर। जैसे कि अमन ने कहा, वो ब्रिटिश पुलिस ज्वाइन करेगा, तो वो लगा अब मशक्कत मेहनत करने के लिए। उसने तरह तरह के पैंतरे यूज किए, तरह तरह के हथकंडे यूज किए। वो कोशिश करने लगा कि किसी तरह वो ऐसा कुछ करे कि ब्रिटिश अफसर्स के नजर में वो आ जाए और वो लोग अमन को ब्रिटिश पुलिस में ज्वाइन कराए। तो दूसरी तरफ विक्रम और ज्यादा सक्रिय हो चुका था संगठना में, वो और ज्यादा तेज हो चुका था, अब उसका काम बढ़ चुका था। अब वो क्रांतिकारियों को इकट्ठा करने लगा, गांव-गांव जाकर मीटिंग्स लेने लगा,
गांव गांव जाकर लोगों को आजादी का महत्व बताने लगा। और ठीक इसी तरह अब दोनों की जिंदगी बदल चुकी थी, दोनों के रास्ते बदल चुके थे। जो दो दोस्त कभी एक हुआ करते थे, जिनकी मिसाल पूरा गांव देता था कि ये दो लोग कभी अलग नहीं हो सकते, अब वो दो लोग अलग थे पर उनका मकसद एक था, आजादी। कुछ महीने बाद अमन को ब्रिटिश पुलिस में नौकरी मिल गई। अब वो सब इंस्पेक्टर अमन खान था। अंग्रेज ऑफिसर्स उसको पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट था, डिसिप्लिन था और लॉयल लगता था। मगर किसी को पता नहीं था कि हर रात वो सीक्रेटली आजाद सेना मंडल को इन्फॉर्मेशन भेजता है। विक्रम भी एक एक्टिव रिवॉल्यूशनरी बन चुका था। वो पोस्टर चिपकाता था, सीक्रेट मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करता था और कभी कभी पुलिस से भागता भी। मगर उसके दिल में एक डर था, कहीं अमन सच में बदल ना जाए। और एक दिन 1931 की बात है, लखनऊ में अचानक पुलिस की रेड पड़ी, कई क्रांतिकारी पकड़े गए और उनमें से एक था विक्रम सिंह। जब उसे पुलिस जीप में बिठाया गया तो उसने देखा सामने खड़ा हुआ ऑफिसर कौन है। खड़ा हुआ ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त सब इंस्पेक्टर अमन खान है। दोनों की आंखें मिली मगर अमन का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था, जैसे वो उसे जानता ही ना हो। विक्रम के दिल में एक ही ख्याल आया, शायद मैं गलत था, शायद अमन सच में बदल गया। विक्रम के दिल में बहुत सारे ख्यालों में से एक ख्याल ये भी था कि कहीं अमन ने तो अंग्रेजी अफसरों को ये हमारी छुपे हुए ठिकानों के बारे में तो नहीं बताया। क्या अमन की वजह से तो हम क्रांतिकारियों पर रेड नहीं पड़ी? क्या अमन की वजह से हम पकड़े गए? ऐसे तरह तरह के सवाल उस रात विक्रम के जहन में, दिलो दिमाग में उठ रहे थे। दोस्ती, वफादारी और आजादी की कहानी अब एक नए मोड़ पर आ गई, मगर असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। क्योंकि अंग्रेज जेल के अंधेरों में एक दोस्त मरने वाला था और दूसरा एक ऐसा बदला लेने वाला था जिसे पूरा हिंदुस्तान याद रखेगा। तो दोस्तों, अब विक्रम जेल में है और उसके दिल में ये सवाल है कि अमन पूरी तरह से बदल चुका है और वो ब्रिटिश पुलिस का वफादार है। दोस्ती, आजादी उसके लिए अब कुछ मायने नहीं रखती। वहीं दूसरी तरफ अमन के दिल में, दिलो दिमाग में बस एक ही चीज मौजूद है और वो ये कि लखनऊ से किस तरीके से क्रांतिकारियों के नाम की फाइल वो चुरा ले और उसे खत्म कर। तो कहानी का अगला भाग देखते हैं हम एक ब्रेक के बाद। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM।